0: आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।
1: सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई ताजगी के साथ ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आपके रेडियो साथी आरजे पूरा दुनिया आकाशवाणी तनागर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। आज सन 2024 के सितम्बर महीने की 4 तारीख है और दिन है शुक्रवार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। अब इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन सफलताओं और खुशियों से भरी हो, आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों, आज की पहली प्रसारण सभा की शुरुआत करें इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आपातकालीन श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 7:10 पर।

कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आप सुन पाएंगे 7:15 पर। तागिन श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 7:35 पर। 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदा बहार सुबह के 8 बजे से लेकर 8:40 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज़।

7:40 मिनट पर आप सुन पाएंगे ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे से लेकर 9:10 तक आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को।

0: सुबह के 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म मेकअप सब। 10 बजे से लेकर 10:10 तक आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह के 10:10 पर आप सुन पाएंगे आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। और सुबह के अंत में 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का रूपरेखा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के ठीक 6 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की DNA प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर DNA प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। DNA प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त DNA प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक

0: प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member joint committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahtab, Tejasvi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th August gave nod for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has sent two more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation Mahabir Pun. The Ministry of Home Affairs will make available services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and Laboratories of the National Forensic Sciences University for DNA profiling of first-degree biological relatives of missing persons from India following the flash flood in Nepal. Ministry of External Affairs said first-degree biological relatives residing in India may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal Police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification subject to the technical requirements communicated by the Nepali authorities. The helpline number in this regard is +977 9841 616095. The DNA profiles along with the preliminary information required by the Nepali authorities may be sent to email to dnacodis@nepalpolice.gov.np for comparison with DNA profiles obtained from unidentified mortal remains. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today. Devotees throng to the temples to offer prayers to Lord Krishna. Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna. Thousands of temples, including Banke Bihari Temple, Prem Mandir, ISKCON Temple and Shri Krishna Janmabhoomi Temple, have been tastefully decorated in Mathura, the birthplace of Lord Krishna. In women's cricket, India stormed into semi-final of 2020 Asia Cup, defeating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai last night. And that is the end of this news bulletin.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को. आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी तनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत. इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन पाएंगे ताबायल नाबम और पार्टी की आवाजों में क्रिश्चियन भजन.

0: तावा यल नाबम और पार्टी की आवाजों में आप सुन रहे थे क्रिश्चियन भजन। इसी के साथ ही भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगाम जब अमदगला हित पोलो गालो लोपी आरो गालो मेंकेन अबालोक मेलेन जिदाग नांगो मारियो मत मलोग मदो आलो बृहस्पति बार ओक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओक प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेलगाम निर्मे बार्थ डी वेबर मुन्य देश अंग येगो दुगो ग अबालो याका जागो जिंगमिन कोंगमिन हितु मुन्य अंब जिंगमिन कोंगमिन हिदा कुला मेनला देश अंग येगो दुगो हिगिमने गोत याया दोग ब येरिक दोरिक हिला कुस्का ओक पिगो पागो ग अबा गद्दम सिन अल्लुब गोर हिला जुका अमला याका जागो जबर हितु ओक बेलगाम देश हिगो दोगो होक इकोनॉमिक अबालो 24 नंबर लो आदु नाक अमला सिन जबर हितु ओक देश अंग लीडर अन्य मेला कुई के देन अबा हिगिम सिन अल्लुब लेला जुका अमला सिन मेंड्रिक हिदा कुला डिपेंस ग अबा लो सिन पेंको पेंको लो ट्रेनिंग अबा अम अल्लुब इतो मेंटम हिला जुका अमला उलु उसी अगों बसिन एरिक हिला सिन इकाकु मलोग अलोलो 7th सीटिंग ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ द 8th अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लोक लोदुम दाग ओगो एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना मसिन येलिक्तो एक नकबा लो स्पीकर अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली तेसांग पोंगते मुग होकी अब दुग हिदुकुला कबा अमने कोरगतु ओके एक नकबा लो हम पास्तु स्टेट होक बिजनेस ग अबा गदम ने योब इलासिन अल्लुब काजिन ताजिन लगजुका ओक स्टेट होक यद नगो बिजनेस इलायन नीगो कादा कुदि एक नगा गदम सिन अल्लुब मेंटम मुतम गेकला अलना बदु बदा लोक इम लगजुका एमलासिन अलजाब पासी कतुकु कराते चैंपियनशिप 2026 इतनाम ग अबालो अरुणाचल स्टेट होक ताम लुपिन अतने अरुणाचल ग अमीन लोक कली दोक ब अमला दार्लेन गेक बा एक्सिन 24 एशियन कैडे जूनियर अंडर 21 कराते चैंपियनशिप 2026 लोक लगा ब ओगो एक न कली अबा अमने होक पोलो ग 6-10 तारीख लोक कली एक्सिन जोरदान बोलो ताम लुपिन अत ग अम्ब कली तनाम अम कादु थादुकुला डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन मु माजी ब कोई ज्यादा लसिन इका ओकम अम्ब कोई दक्कुला आल देन अनियल तोसिन इंटरनेशनल लेवल लोसिन अलुब इपादाग ब येरुजिस तोलाक अमला बेस्ट विशेष एमसिन आयागमम जिलिकताका तनगाद नोनु घालो मेंकेन आगम हिम आकाशवाणी इटानगर लोक तपदु मलोग अलोलो तवांग डिस्ट्रिक्ट डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल लो ओमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग द ओमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड स्कीम्स ग अबाबा एमने मेंटो मितम नाम अवेयरनेस प्रोग्राम गो अलजाब इक्तो एकन गुद इदाक लो तवांग लोक गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स प्राइवेट स्कूल टीचर्स ओक कब कब स्टेक होल्डर्स रूगा दसिन ये लिखतु ओक एकना आ लिखना रूगा

dame sidi pio tawang dondu pema mu tomrik agomamsin aljaba la rikhi tu ogo mu amba tomrik dagla WCD department lo ka yad na go dins na ababa kada kudi ek na ruga damsin alliba menkenji tu ok amba menkenji dagla nunu yoba ilasin anyama ok aw nijir gadam ga yego du go laga ba alliba kastaj ru to ka amlasin dinsi jaba menken hitu Muga Arunachal State hoka katak densar ba gumin pangin mu pat yaru ba pan akengo ba ikaku okka mu isyang district ga rayang dolu lokka mu Doordarshan New Delhi boloka number 1 lo darlen tu ku mu amne okka B grade artist status basin pakaku okka mu amne Ministry of Culture Government of India CCRT scholarship award amsin jika gumin mu katak dance amne paryang sangeet समिति अलाहाबाद बोलो ट्रेनिंग इटू एक्सिन तब का बनाम कथक गुरु ग्वारी दिवंकर अरालो ओक इंडियन आर्मी का तक्सिन लोक तदिबाम तो इंडियन आर्मी का दम ने तक्सिन लोक दोलूनी गद अग वॉलंटियर ब दोनाम तीनाम अम्बिन्यमो का दम ने गस्तु एक्सिन धूम पोलो के गल्लेला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी लो बे गलिक जितु ओके दोलो निगा दे मेला गुनु पे लो के याद ना गो इदु मेंदुम सा काई कुना दे एक गुनु इदु काम बतोल पे कम ला मेंतु ओके मुनु मेंटला गुन सिन आयग देश लगा बे माजी बे मुन गोन अकेंगो बे इदु ना के एमला सिन अलदु बे मेंकेन हितु के तान गा द हिरग गालो मेंकेन अगम अगम

0: tagapsa agomgo HIV bemar higum aluba hensla yenam higi naru lok dinsna
1: HIV bemar higi yo lok nyomi hitakko amyomne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yupam dobam hila beji syringe nigbam hit lok ok anne HIV gayomne aki lok awam sin nyogla du
0: amge tagapsa agomgo HIV bemar higum aluba hensla yenam higi naru lok dinsna
1: HIV bemar higi yo lok nyomi hitakko amyomne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yupam dobam hila beji syringe nigbam hit lok ok anne HIV gayomne aki lok awam sin nyogla du
0: amge mba toka amumba dubam hik lok alakia ya hik lok gombagom ya hik lok dobam tibam hik lok ok tarupik lok HIV higi nyong madona ka
1: HIV test ika hila yeru tolaka hengor bolo nomne moklasin ilado nok gunam hunam amsin aluba gupu gupulasin ilado
0: HIV higum bosyo ka aluba den hen lajuka test kot ka ok HIV gan namne arik map juka higi ariksa kama
1: HIV ga lagu laga higimne aluba hen nam laga ba National AIDS Helpline 1097 number hobo call ru tolaka
0: hakna dins na bahigum gumin hoin lagaba Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS nahalagan pela lokka jilentu
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात और साथ ही बता दूं दोस्तों अगर आपको गालो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना है तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी तनगर का मिडमुइप 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे आकाशवाणी तनगर का मिडियम वेव और FM के सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं और अब वक्त है दोस्तों कार्यक्रम सुबह सवेरे का जहां हम बात करते हैं हमारे स्वस्थ जीवन शैली की और साथ ही सुनाएंगे आप सबको चंद खूबसूरत नगमे

तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम का ताजा तरीन अंक। और दोस्तों, आजकल हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सीधा चाय या कॉफी की तरफ भागते हैं ताकि नींद और सुस्ती दोनों दूर हो जाए। लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से रात की नींद भी खराब हो सकती है और शरीर और ज्यादा थका हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन एक और बेहतर तरीका है सुबह खुद को जगाने का, वो है सुबह की कसरत। सुबह थोड़ी देर शरीर को चलाने फिराने से ताजगी आती है, शरीर में फुर्ती बनी रहती है और पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। और सबसे अच्छी बात, वही सेहतमंद आदत सबसे बेहतर होती है जिसे हम रोज निभा सकते हैं। सुबह कसरत करने से खून का दौरा तेज होता है, नींद की सुस्ती दूर होती है और शरीर जल्दी सक्रिय हो जाता है। अध्ययन में भी ये देखा गया है कि सुबह की कसरत दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। इसके लिए मुश्किल या शरीर भारी कसरत जरूरी नहीं है, हल्की फुल्की गतिविधि भी काफी फायदेमंद हो सकती है। तो आइए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कुछ आसान से मॉर्निंग एक्सरसाइजेस और उनके फायदों के बारे में।

सबसे पहले दोस्तों सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग से शुरुआत कीजिए। सुबह उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, इससे शरीर की अखर कम होती है और मांसपेशियां धीरे धीरे खुलने लगती है। आप गर्दन को धीरे धीरे घुमाइए, कंधों को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर खींच कर बॉडी को लंबा कीजिए और पैरों को हल्का स्ट्रेच दीजिए। सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी शरीर को हल्का और ताजा महसूस करवा सकती है।

टहलना या हल्की दौड़ लगा सकते हैं। सुबह की ताजी हवा में हल्का सा टहलना या धीरे धीरे दौड़ लगाना दिल और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे खून का दौरा बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा का एहसास होता है। अगर आप नए हो तो पहले हल्का वॉक कीजिए, फिर आप जब थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे धीरे जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। साथ ही जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। ये एक आसान और मजेदार कसरत है जो पूरे शरीर को सक्रिय कर देती है। हाथ पैर खोलकर जंप करना हार्ट रेट को बढ़ाता है और सुस्ती को दूर करता है। सिर्फ 30 या 50 जंपिंग जैक्स भी आपको एनर्जेटिक फील करवा सकती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बिना किसी मशीन या ज्यादा जगह के भी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आगे ऐसे ही और भी कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। और दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे थे कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइजेस और उनके फायदों के बारे में। तो आइए बात करते हैं योग के। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। सुबह योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियों की जकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। तदासन, व्रजासन और बालासन जैसे आसान शरीर को स्ट्रेच करते हैं और मन को शांति देते हैं। सांस की क्रिया के साथ योगा करने से शरीर में ऑक्सीजन का दौरा और बेहतर होता है। इससे मन शांत रहता है और दिन भर गुस्सा, तनाव और चिंता कम महसूस होती है। कई लोग सुबह योग को अपने मी टाइम की तरह भी देखते हैं, जहां कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बिताए जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप सुबह साइकिल चला सकते हैं। साइकिल चलाना एक हल्का लेकिन बहुत असरदार व्यायाम माना जाता है। ये दिल को मजबूत बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शरीर को धीरे धीरे पूरी तरह जगाता है। सुबह कॉलोनी या पार्क के आसपास हल्की साइकिल सवारी करना सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी खुश कर देता है। ठंडी हवा और सुबह का शांत माहौल पूरे दिन के लिए अच्छा महसूस करवाता है। और सबसे अच्छी बात, साइकिल चलाना घुटनों पर ज्यादा जोर भी नहीं देता। और साथ ही आप उठक बैठक यानी स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। स्क्वाट्स पैरों, जंघों और कमर के नीचे वाले हिस्सों को मजबूत बनाते हैं। इसके लिए पैरों को कंधों के बराबर रखिए और धीरे धीरे नीचे बैठकर फिर सीधा खड़े हो जाइए। शुरुआत में आप 10 या 15 स्क्वाट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं जब आप थोड़ी कम्फर्टेबल हो जाए। ये कसरत शरीर का संतुलन सुधारने में भी मदद करती है और पैरों में ताकत बढ़ाती है। तो दोस्तों सुबह की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और कसरत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे शरीर में फुर्ती बनी रहती है, मन खुश रहता है और दिन भर काम करने में भी मजा आता है। तो सुबह उठिए और थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए और अपने दिन की एक सेहतमंद, ताजगी भरी और खुशनुमा शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों आज की स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम का अगला गीत। आप सुन पाएंगे माय नेम इज खान फिल्म से सजदा। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा ने।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही इस भाषा भेड़े कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपातकालीन श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी तनेकर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज के यानी 4 सितंबर के कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां। तो बने रहे हमारे साथ और सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz।

तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फोटेन कार्यक्रम का ताजा तरीन अंक और सबसे पहले नजर डालते हैं ऐतिहासिक घटनाओं पर। जानते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत और विश्व इतिहास में 4 सितंबर का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 4 सितंबर की ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। और सबसे पहले बात करते हैं भारत की एक महान राष्ट्रवादी नेता दादाभाई नौरोजी की। 4 सितंबर 1825 को दादाभाई नौरोजी का जन्म बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हुआ था। उन्हें प्यार से ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो उन प्रमुख भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हितों की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाई। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को सामने रखा। बाद में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। चार सितंबर 1888 को सिर्फ 18 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड के

लिए रवाना हुए। आगे चलकर वही युवा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए। इंग्लैंड की यात्रा उनके जीवन के उन अनुभवों में से एक थी जिसने उनकी सोच और व्यक्तित्व को गहरा प्रभावित किया। 4 सितंबर भारत के इतिहास में भी खास महत्व रखता है। 1946 को इसी दिन भारत की अंतरिम गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी। जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लीडर थे। ये सरकार भारत की आजादी के ठीक पहले सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

अरब इतिहास का एक ऐसा पल जिसने दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक को जन्म दिया। 4 सितंबर 1781 को फुटपुर बसने वालों के एक समूह ने कैलिफोर्निया में एक स्पेनिश पेब्लो की स्थापना की। आगे चलकर इसी बस्ती का नाम लॉस एंजलिस पड़ा। आज लॉस एंजलिस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत 4 सितंबर 1781 से जुड़ी हुई है। इस दिन 1882 में बिजली के इतिहास में भी एक बड़ा कदम उठाया गया। थॉमस एडिसन के पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन ने न्यूयॉर्क में बिजली की सप्लाई शुरू की। ये दुनिया के शुरुआती केंद्रित इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में से एक था। इसके बाद शहरों में, घरों में और व्यावसायिक स्थानों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था ने धीरे धीरे एक नया रूप लेना शुरू किया। सितंबर 1888 को जॉर्ज ईस्टमैन को एक ऐसा कैमरा के लिए पेटेंट मिला जो आम लोगों के लिए फोटोग्राफी को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बना। इस दौर में कोडक नाम फोटोग्राफी की दुनिया में मशहूर हुआ। आप सोचिए, एक समय फोटोग्राफी के लिए भारी भरकम सामान की जरूरत होती थी और फिर ऐसा कैमरा आया जिन्होंने तस्वीर खींचना आम लोगों के लिए बहुत सरल बना दिया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रमुख सुर्खियों पर।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम में। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों पर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, अपसो वर्न्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स ओवर थ्रेट्स टू एसआईआर टीम्स, एसआईआर सस्पेंडेड इन बिजोईपुर। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी अपसो ने एसआईआर टीम्स को मिल रहे धमकियों के मामले में सख्त प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। वहीं बिजोईपुर में एसआईआर का काम स्थगित कर दिया गया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने प्रशासन से जरूरी कदम उठाने की मांग की है। अगली हेडलाइन है, विलेजर्स कैरी फूड एसेंशियल सप्लाईज फॉर आर्मी। तकसिंग और आसपास के गांव के लोगों ने भारतीय सेना के जवानों तक भोजन और जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। दूरदराज सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों का ये सहयोग सेना और स्थानीय समुदाय के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन वीमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। तावंग में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून और सरकारी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देना और जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के तरीकों से अवगत कराना है। अगली हेडलाइन है, TWS प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू डापो फायर अफेक्टेड फैमिलीज। तामिन वेलफेयर सोसाइटी यानी TWS ने दापो में आग से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की है। संगठन की टीम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी जरूरत को समझने का प्रयास किया। ऐसे समय में सामाजिक संगठनों का सहयोग परिवारों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दी अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन है, इंडक्शन प्रोग्राम फॉर NSS वॉलंटियर्स हेल्ड। दोईमुख में एकेडमिक सत्र 2026-17 के लिए NSS वॉलंटियर्स का इंडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नए वॉलंटियर्स को NSS की गतिविधियों, जिम्मेदारियों और समाज सेवा के उद्देश्य से परिचित कराया गया। इससे युवाओं में सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है। नातुंग रिटेरिट स्टेट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एंश्योरिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। न्यू दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के PHA मिनिस्टर मामा नातुंग ने राज्य में सुरक्षित पेयजल सुविधाओं

को सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि लोगों तक साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में स्वस्थ और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अगली हेडलाइन है, डेडलाइन फॉर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक्सटेंडेड। जीरो में जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे स्टूडेंट्स और युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और नए विचारों को सामने लाने के लिए और समय मिलेगा। इच्छुक प्रतिभागी अब बढ़ी हुई समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी और रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। शेरगांव फॉग क्वेस्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर। शेरगांव में 17 अक्टूबर से शेरगांव फॉग क्वेस्ट का दूसरा संरक्षण आयोजित होने जा रहा है। ये संगीत और लोक संगीत से जुड़ा कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय कला, परंपरा और संगीत को मंच मिलता है। ऐसे उत्सव अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। ये गीत है जोधा अकबर फिल्म से, जिसने भारा। इस गीत को गाई है जावेद अली ने।

दोस्तों इसी के साथ ही मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ देर बाद आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
1: नर्स दीदी क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
0: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
1: सच में दीदी?
0: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में रूप तेरा मस्ताना। इसी के साथ ही सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

0: भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख

0: क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं किसी

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों सभा के इस भाग में लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
2: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो ईटानगर कार्यक्रम में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ रोचक जानकारियां और साथ ही सुनवाएंगे आपको कुछ खूबसूरत हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जो वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं, और इस साल यानी 2024 में जन्माष्टमी 4 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। भारत में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां श्री कृष्ण की कहानी किसी न किसी रूप में ना मिलती हो। कहीं वो बाल गोपाल है, कहीं बांसुरी बजाने वाले कन्हैया, कहीं राधा के साथ प्रेम और भक्ति का प्रतीक, और कहीं महाभारत के बीच अर्जुन का सारथी। इसलिए जन्माष्टमी को समझना सिर्फ एक धार्मिक पर्व को समझना नहीं है, ये भारत की कहानियों, कला, संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं को समझने का भी एक मौका है। कृष्ण की जन्म कथा मथुरा से जुड़ी हुई है। परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। देवकी के भाई कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला था कि देवकी की आठवीं संतान उसके अंत का कारण बनेगी। इसी भय के कारण उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। और फिर वो रात आई जिसे आज जन्माष्टमी के रूप में याद किया जाता है। मान्यता है कि कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें मथुरा से यमुना पार करके गोकुल ले गए, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उनका बचपन बीता। लेकिन कृष्ण की कहानी का सबसे लोकप्रिय हिस्सा शायद उनका बचपन है। गोकुल और वृंदावन की गलियों में पलने वाले वो कृष्ण जिन्हें यशोदा मैया की डांट मिलती है, जो अपने साथियों के साथ शरारतें करते हैं और जिनके बांसुरी की धुन की कहानियां आज भी लोकगीतों और कला में सुनाई देते हैं। यही वजह है कि जन्माष्टमी पर कई घरों पर मंदिरों में कृष्ण के बाल गोपाल की झंकियां सजाई जाती है। छोटा कृष्ण की मूर्ति को पालने में बिठाया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और रात के समय जन्मोत्सव मनाया जाता है।

लेकिन दोस्तों, जन्माष्टमी का रंग हर जगह एक जैसा नहीं होता। मथुरा और वृंदावन में इसका संबंध कृष्ण के जीवन से जुड़ी उन परंपराओं से है जो सदियों से चली आ रही है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है, भजन और कीर्तन होते हैं और रात को कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ब्रज के अलग अलग स्थानों मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन जैसे जगहों में इस पर्व का अपना अलग अलग रंग देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों, कृष्ण की कहानी सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। रासलीला इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाओं को नृत्य और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की ये परंपरा मथुरा के साथ साथ मणिपुर और असम जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी विशेष रूप से लोकप्रिय रही है। यानी कृष्ण की कहानी अलग अलग प्रदेशों में अपनी स्थानीय कला और परंपरा के साथ एक नया रूप ले लेती है। फिर आता है जन्माष्टमी का एक और बहुत मशहूर उत्सव, दही हंडी। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जैसे क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अगले दिन मटकी फोड़ने की परंपरा देखने को मिलती है। ऊंचाई पर लटकाई मटकी तक पहुंचने के लिए लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं। इस परंपरा को कृष्ण के बचपन की उन कहानियों से जोड़ा जाता है जहां वो मक्खन और दही की मटकियों तक पहुंचने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर शरारतें करते थे। और इसी में जन्माष्टमी की एक खूबसूरत बात छुपी है। एक ही कहानी लेकिन अलग अलग प्रदेशों में उसकी अलग अलग अभिव्यक्ति। कहीं नृत्य है, कहीं संगीत है, कहीं मेला और कहीं दही हंडी। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: HIV का मतलब क्या है?
1: कहाँ से सीखा है ये सब? ये सब छोटे बच्चे नहीं बोलते।
2: नहीं पूछना गलत है, पूछना चाहिए। यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। HIV है एक वायरस जिसके कारण एड्स जैसे और कई अन्य रोग हो सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को ये हानि पहुँचा सकता है, इसीलिए सही समय में HIV टेस्ट करना होता है जरूरी। आज से तुम भी इन सब बातों को खुल के कहो। अगर हम हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? याद रखिए, आप भी अपने बच्चों की परवरिश करें अच्छे से, उनके साथ HIV के बारे में बातें करें खुल के। अब हर सरकारी अस्पताल में HIV टेस्ट गुप्त रूप में किया जाता है।

0: वो भी बिल्कुल फ्री। अधिक जानकारी के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
1: अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

इसी के साथ ही दोस्तों हेलो इटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ रोजाना की तरह आज भी आपको ये अंक बेहद पसंद आए होंगे। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी इटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा है कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN2.0 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 21 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश डाकोर और श्यामला जी सहित प्रमुख कृष्ण मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अर्न FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सिनेमा के घरों के हालचाल, OTT अपडेट्स और साथ ही सबसे चर्चित सितारों की खबरें। तो आइए आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस महीने यानी सितंबर को कई अलग अलग और शानदार फिल्में रिलीज होने वाली है। इस महीने एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और अलग अलग तरह की कई फिल्में देखने को मिलने वाली है, जिनका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस महीने रिलीज होने वाली कुछ बड़े फिल्मों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हैवान फिल्म की। ये फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान की करीब 18 साल बाद होने वाली कमबैक है, लेकिन इस वापसी में दोनों एक तरफ नहीं बल्कि आमने सामने नजर आने वाले हैं। फिल्म में सैफ अली खान एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट का रोल निभा रहे हैं, जो एक बच्ची को बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक हत्यारे के खिलाफ खड़े होते हैं। वहीं अक्षय कुमार एक क्रूर और रहस्यमय हत्यारे के किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और इसमें बोमन ईरानी, श्रेया पिलगांवकर, सैयानी खेर और राजपाल यादव जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर भी सामने आ चुका है, जिसमें अक्षय कुमार का खतरनाक रूप और सैफ अली खान का दमदार अंदाज देखने को मिला है। हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, इस बार अक्षय कुमार और सैफ अली खान में खिलाड़ी तू अनारे जैसे मजेदार जोड़े में नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ इंटेंस कैरेक्टर में नजर आने वाली है।

दोस्तों बात करते हैं दायरा फिल्म के। ये फिल्म करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की पहली साथ आने वाली फिल्म है, जिसे मेघना गुलजार एक गंभीर और रहस्यमय क्राइम स्टोरी के रूप में लेकर आ रही है। कहानी एक ऐसे चौंकाने वाले मामले के इर्द गिर्द घूमती है, जो समाज के सामने कानून, जस्टिस और सच्चाई को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। फिल्म में करीना और पृथ्वीराज दोनों पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आने वाले हैं। एक ही मामले को लेकर दोनों के अलग अलग नजरिया इस फिल्म को और खास बनाने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बताया जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दायरा 18 सितंबर को सिनेमा घरों पर रिलीज होने वाली है। और दोस्तों गुड्डू भैया, कालीन भैया और मुन्ना भैया जैसे कैरेक्टर्स अब सिनेमा घरों में पहले से कई ज्यादा बड़े स्तर पर नजर आने वाली है। हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में खून खराबे बदले और सत्ता के लड़ाई की जबरदस्त झलक दिखाकर मिर्जापुर द मूवी फिल्म के लिए ऑडियंस की एक्साइटमेंट

और बढ़ा दी है। खास बात यह है कि इस फिल्म में सीरीज की दुनिया की एक ऐसे चैप्टर को दिखाई जाएगी जिसे दर्शकों ने कभी नहीं देखा है। अब देखना होगा कि मिर्जापुर द फिल्म की ये बौखार दर्शकों को कितनी पसंद आती है। और ये फिल्म 4 सितंबर यानी आज थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तो अगर आप मिर्जापुर सीरीज के फैंस हैं तो आप मिस मत कीजिएगा।

और दोस्तों आज ही एक और फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है जीवन बीमा योजना। फिल्म का टाइटल ही थोड़ा हटके है ना। अरशद वर्सी की एक अलग डार्क कॉमेडी और क्राइम वाली फिल्म होने वाली है ये। और इसमें अरशद वर्सी पहली बार लुक अलाइक कैरेक्टर प्ले करने जा रही है। जी हाँ, फिल्म में वो जीवन और भीमा का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। तो थोड़ा फन और कन्फ्यूजन वाली फिल्म देखनी हो तो आप जीवन बीमा योजना देख सकते हैं, जो आज रिलीज हो रही है। तो दोस्तों वीकेंड एंजॉय कीजिए। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मिर्जापुर डब फिल्म देख सकते हैं, या अरशद वर्सी वाले जीवन बीमा योजना देख सकते हैं, या फिर आप दोनों भी देख सकते हैं। अलग अलग जोनरा की फिल्म में देखने में मजा कुछ और ही आता है। तो दोस्तों ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला गाना सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का। ये इश्क है श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें? यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz और इस वक्त आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया के साथ फिल्मी गपशप कार्यक्रम में। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटे न्यूज पर। तो दोस्तों बॉलीवुड के स्टार्स जब अपने सीरियस इमेज से हटकर थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं तो फैंस को भी काफी मजा आता है। ऐसे ही एक मोमेंट वरुण धवन के साथ देखने को मिला जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के एपिसोड 6 में पैनलिस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। शो के दौरान कॉमेडियन निशांत तनवार ने वरुण की एक्टिंग को लेकर मजाक किया। वरुण ने भी बात को सीरियसली लेने के बजाय समय रैना की तरफ रुख किया और उसने एक्टिंग करने को कह दिया। इसी छोटे से एक्सचेंज ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया और सोशल मीडिया पर भी लोग इस मोमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। और दोस्तों कभी कभी बॉलीवुड में एक एक्टर को पहचान मिलने में सालों लग जाते हैं। रजत बेदी ने भी अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात शेयर की है। उनका कहना है कि पहले लोग उन्हें चेहरे से तो पहचान लेते थे लेकिन नाम याद नहीं होता था। अब जब लोग उनका नाम जानते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी पहचान में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर ज्यादा सेलेक्टिव हो चुके हैं। और दोस्तों करीना कपूर ने अपनी जिंदगी का एक ऐसे फैसले के बारे में बात की जिसका अफसोस उन्हें आज भी है। एक रिसेंट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने क्लास 11 के बाद पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग को अपना करियर बनाया।

लिया था। उस वक्त वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, लेकिन आज उन्हें लगता है कि एजुकेशन कंप्लीट करना भी उतना ही जरूरी था। करीना ये भी कहा कि उनकी इस एक्सपीरियंस ने उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर और ज्यादा कॉन्शियस बना दिया है। वो चाहती है कि तैमूर और जे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद अपने दिल की सुने, यानी अपने अपने सपने को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को बीच में छोड़ना वो अब अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हैं हमारे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के साथ साथ OTT पर भी कुछ नया देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग

होने वाली है। और सबसे पहले बात करते हैं तापसी पन्नू की, जो एक बार फिर एक दमदार किरदार में नजर आने वाली है। तापसी की फिल्म गांधारी 3 सितंबर यानी कल नेटफ्लिक्स में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में वो एक ब्लाइंड मदर का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए बच्चों की तस्करी करने वालों के खिलाफ खड़ी होती है। यानी एक माँ का जज्बा, उसकी हिम्मत और अपने बच्चे के लिए लड़ने की कहानी। तापसी के फैंस के लिए ये फिल्म खास होने वाली है। और अगर आपका मूड थोड़ी कॉमेडी का है तो अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वर्सी और जावेद जाफरी की धमाल 4 सितंबर 4 से यानी आज से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। खजाने की तलाश, मजेदार उलझने और वही धमाल वाली मस्ती फ्रेंचाइज के फैंस के लिए वीकेंड पर एक एंटरटेनिंग ऑप्शन हो सकता है। वही दोस्तों, आर मधवन की GDN भी सितंबर के पहले हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। ये फिल्म गोपाल स्वामी नायडू की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है, जिसमें मधवन उनका किरदार निभा रहे हैं। तो अगर आपको रियल लाइफ स्टोरीज और बायोपिक्स पसंद है तो आप GDN देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। और बॉलीवुड से थोड़ा हटकर देखें तो नेटफ्लिक्स पर द जेंटलमैन का सीजन 2 भी 3 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। क्राइम और कॉमेडी का ये कॉम्बिनेशन अपने पहले सीजन की वजह से काफी चर्चा में रहा है। तो जो लोग सस्पेंस के साथ थोड़ी डार्क कॉमेडी पसंद करते हैं, उनके लिए जेंटलमैन एक अच्छी चॉइस हो सकती है।

0: दोस्तों कार्यक्रम में लौटेंगे अगले गाने के साथ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
1: नर्स दीदी क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
0: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
1: सच में दीदी?
0: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों इसी के साथ ही आज का फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम लौटेंगे 10:10 पर आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
5: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashwani, the news read by Nina Arakel.

0: मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आप सबका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और आज आप बने हुए हैं मेरे साथ, आपके रेडियो साथी RJ दुनिया के साथ। और दोस्तों, आज भी बहुत सारे रिक्वेस्ट हमें आए हैं, गाने की रिक्वेस्ट बहुत सारी आई है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप सबके गाने प्ले करें, और कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग ना रह जाए। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम। और आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है पश्चिम चाईबासा झारखंड से। शिभा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शुभांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है ड्रीम गर्ल फिल्म का राधे राधे, और इस गाने को गाया है मीत ब्रॉस और अमित गुप्ता ने।

और दोस्तों अगला मैसेज अगला गाना रिक्वेस्ट हमें आया है लंखंगसम कार्बी आंगलोंग से टेंसन क्रो रोसमेरी टेरोनपे सरलोए क्रो जी का और उन्होंने आज रिक्वेस्ट करी है क्या दिल ने कहा फम से सजना तेरे प्यार में परदेसी हो गए और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो टेंसन जी रोसमेरी और सरलोए क्रो आप सभी के रिक्वेस्ट पर पेश है ये आप सबका पसंदीदा गाना।

दोस्तों चलिए रिदम डिमांड पर अगली रिक्वेस्ट की ओर चलते हैं। और ये मैसेज हमें आया है तेंसन क्रोजे का, जो कि रहने वाले हैं लंगहक्सम कार्बी अंगलोंग असम का। और आज तेंसन जी को सुनना है साथ ही फिल्म का यारा ना यार का ना कभी छूटेगा। और बता दो इस गाने को गाया है कुमार सानू और विपिन सचदेवा ने। तो तेंसन जी पेश है आपका पसंदीदा गाना यारा ना यार का ना कभी छूटेगा।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर। अगला मैसेज हमें आया है असम से। सुनीता, अमोल, बिमोल, देवाशीष, रोमेश, लकी और बायकॉम जी का, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है हम साथ साथ है फिल्म का मैया यशोदा गाने को। और इस गाने को गाया है अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने। तो आइए सुनते हैं आपका पसंद का गाना।

0: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
1: नर्स दीदी क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
0: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
1: सच में दीदी?
0: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
2: छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन पाएंगे जीनियस फिल्म से तेरा फितूर। और इस गाने की फरमाइश आज हमें दो लिसनर्स ने भेजा है, असम से सोम टूडू और विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बोखाघाट असम से हर्षित गोस्वामी जी ने। सोम टुडू जो रहने वाले हैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम का और हर्षित गोस्वामी जो रहने वाले हैं बोखाघाट असम का। तो सोम जी और हर्षित जी, उम्मीद करती हूँ इस वक्त आप हमें सुन रहे होंगे। पेश कर रहे हैं आपका पसंदीदा गाना तेरा फितूर और इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने।

आइए दोस्तों बढ़ते हैं रेडियो डिमांड में अगले मैसेज की ओर जो हमें आया है। सरिहजान कार्बी आंगलोंग असम से जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतीपी और धौरमग्री रोंगपी जी का आज उन्होंने फरमाइश की है छोटी बहू फिल्म का हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया किशोर कुमार की आवाज में। जोगेंद्र जी, सोनाली और धौरमग्री जी, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमें सुन रहे सारे श्रोताओं को भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं आपको पसंद का गाना हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया।

रेडियो श्रोताओं, वारुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। आइए बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर, जो हमें आया है जुनाई मेसा के सपोरे धेमाजी असम से बिमोल बासुमतारी जी का। आज बिमोल ने रिक्वेस्ट करी है राजा फिल्म का नजरे मिली दिल धड़का, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, और साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों को डेडिकेट करना नहीं भूला है। उन्होंने डेडिकेट किया है बायको मुंडा, अमोल बासुमतारी, रमेश मैनू रभा, अंजलि बासुमतारी, हितेंद्र दास और देवाशीष हजारिका जी को। तो चलिए सुनते हैं आप सबका पसंदीदा गाना।

दोस्तों रेडियो डिमांड पर आइए अगला गाना सुनते हैं सागर फिल्म का सागर जैसे आंखों वाले किशोर कुमार की आवाज में और इस गाने की फरमाइश हमें भेजी है हलम आसाम से हमारे रेगुलर लिसनर ज्योति सुरेन जी ने।

97 FM 103.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम, जहां आप हमें मैसेज भेजते हैं आपके पसंदीदा गानों को और हम उसे प्ले करते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर, जो हमें मोकचुंग से आई है। नाम है बहादुर जी। बहादुर जी ने हमें रिक्वेस्ट करी है कर्ज फिल्म का शाम भी खूब है अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में। तो आइए बहादुर जी सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गाना

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन पाएंगे, मेरी बनोगे क्या। ये गाना है ऋतु रूबा का और ये एक एल्बम सॉन्ग है और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गीता पेगू जी ने। तो गीता जी, पेश है आपका पसंदीदा गाना मेरी बनोगे क्या ऋतु रूबा की आवाज में।

दोस्तों, आज का रेडियो डिमांड कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन पाएंगे घर आया मेरा परदेश से फिल्म का रोको ना जाने जान अब जाने दो। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हेमंत बोनीता और धोंती गोगोई ने, जो कि रहने वाले हैं डिब्रूगढ़ असम का।

दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। हितेंद्र दास जी, आज हम आपका गाना प्ले नहीं कर पाए, आप हमें कल फिर से मैसेज भेजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपका रिक्वेस्टेड सॉन्ग हम प्ले कर पाए। आज समय ना होने के कारण हम प्ले नहीं कर पाए आपके गाना। और साथ ही बता दूं दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। इसी के साथ ही हम आज की पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं रोजाना की तरह इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पीडोले तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। और इस तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। और दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी आरजे लूसी। तो दोस्तों, अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: आई एम वेरी हैप्पी

0: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएलवी F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल है। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the advanced

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में, जहां सिनेमा की दुनिया से जुड़ी हर कहानी, हर इमोशन और हर फिल्म को हम देखते हैं एक नए नजरिए से। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, और आज के एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ फिल्मों के बारे में। तो एक तरफ होगा एक्शन ड्रामा और इंटेंस स्टोरी टेलिंग, और दूसरी तरफ होगी रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल और सेल्फ डिस्कवरी के रंगों से भरी। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, हम बात करेंगे कि फिल्म में क्या काम करता है, क्या थोड़ा कमजोर पड़ता है, परफॉर्मेंसेस कैसी है, कहानी इतनी इंगेजिंग और सबसे जरूरी, क्या फिल्म ऑडियंस के लिए ये वर्थ वॉचिंग है। तो वॉल्यूम को आप थोड़ा सा भरा लीजिए, चाय की एक सिप ले लीजिए और तैयार हो जाइए सिनेमा की लहरों पर चलने के लिए। ये है कार्यक्रम फिल्मी लहर। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्रम फिल्म अल्फा की। अल्फा एक ऐसी फिल्म है जो अपने प्रेजेंटेशन और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश करती है। फिल्म का ओवरऑल मूड तो काफी इंटेंस है, इसमें एक्शन के साथ आपको ड्रामा और कैरेक्टर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी काफी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो अब बात करते हैं उसकी कहानी की। तो अल्फा की कहानी को सिर्फ एक्शन फिल्म कह देना शायद थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। फिल्म अपने सेंट्रल कैरेक्टर्स और उनके जरिए उनकी सर्वाइवल, उनकी ताकत, उनकी हौसले की जैसे थीम्स को वो एक्सप्लोर करती है। कहानी में मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश की नजर आती है, खासकर उन पोर्शंस में जहां एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। लेकिन यही फिल्म की एक लिमिटेशन भी है, कुछ जगहों पर कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल महसूस हो सकती है। अगर आप एक्शन जॉनर की काफी फिल्में देखते आए हैं तो कुछ डेवलपमेंट शायद आपको पहले से भी गेसेबल लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बोरिंग है, बस इतना है कि फिल्म की ओरिजिनलिटी हर पॉइंट पर इक्वली स्ट्रांग नहीं रहती। तो अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। फिल्म के एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को कन्विक्शन के साथ वो स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। इमोशनल सीन्स में काफी इंटेंसिटी है और एक्शन सीक्वेंस में भी बहुत ही फिजिकल कमिटमेंट दिखाई पड़ता है। तो एक फिल्म तब बहुत शक्तिशाली बन जाता है जब ऑडियंस सिर्फ वहां की मेन कैरेक्टर यानी हीरो के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे कैरेक्टर्स के लिए भी काफी इमोशनली इन्वेस्टेड हो। अल्फा में यही कनेक्शन कुछ जगहों पर स्ट्रांग है और कुछ जगहों पर थोड़ा सा लिमिटेड है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं फिल्म अल्फा का ये सॉन्ग जिसका नाम है मैसेकर।

तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे फिल्म अल्फा के बारे में, तो अब थोड़ा उनकी उस फिल्म की एक्शन और टेक्निकल साइड के भी बारे में बात करते हैं। तो यह अल्फा का काम काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म को एनर्जी देते हैं और बड़ी स्क्रीन एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए लगते हैं। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड स्कोर भी काफी टेंशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, और एक्शन की क्वांटिटी से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी कहानी बताने की वैल्यू। तो अगर एक्शन सीक्वेंस स्टोरी को आगे बढ़ाता है, कैरेक्टर को डेवलप करता है या सिचुएशन को और भी मीनिंगफुल बनाता है, तब वो सीक्वेंस और इम्पैक्टफुल हो जाता है। अल्फा के बेस्ट मोमेंट्स वो है जहां एक्शन सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं रहता बल्कि नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप अल्फा देखने जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको एक्शन इंटेंसिटी, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद है तो फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर आप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कहानी या बहुत ही डीपली लेयर्ड स्क्रीन प्ले अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद फिल्म आपकी एक्सपेक्टेशंस को इतना भी पूरा ना करे। लेकिन ये एक अनबायस्ड रिव्यू का पॉइंट है, हर फिल्म को उसके जॉनर और इंटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए। अल्फा एक परफेक्ट 10/10 फिल्म तो नहीं है, लेकिन इसमें अपने जॉनर के ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए काफी एलिमेंट्स मौजूद है। तो आइए, अब फिर से वक्त आ गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो उस पर आइए सुनते हैं अल्फा फिल्म का अगला गीत, जिसे आप सुनेंगे विशाल ददलानी की आवाज में। ये गीत का नाम है हानिया।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic. Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
3: नर्स दीदी, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
2: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
3: सच में दीदी?
2: हाँ बिल्कुल। आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर, या आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों आइए, अब वक्त है आपको ले जाने का अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम
1: Itanagar, and this is Western Melodies. I'm Kai, bringing you a softer side of Western music, songs meant for quiet hours, slow thoughts and gentle emotions. Let's ease into melodies that feels personal, honest and close to the heart. This song is about finding something extraordinary in an ordinary life. Alex Warren sings about choosing love every day, even in the small moments. It's honest, heartfelt, and perfect for anyone who believes real love doesn't have to be loud to be powerful.

0: That brings us to the end of today's Western Melodies on Akashvani Itanagar. I'm Kai, hoping this song gave you a moment to slow down and feel. Until we meet again, take care and stay gentle with yourself and let the music stay with you. Bye-bye.
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज या आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बता दूं कि आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
5: गीत संगीत
6: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
5: प्यार भरे अल्फाजों में
6: दिल से दिल की बात
5: बस आपके नाम
6: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिक

0: की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रूपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदत्त मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: bringing together chief justices, presidents of supreme courts, and senior judicial representatives from BRICS member states and partner countries. The Supreme Court of India is hosting the forum. On the opening day, Chief Justice of India Surya Kant will hold bilateral meetings with heads of judicial delegations from Russia, China, Egypt, Indonesia, the UAE, Belarus, Kazakhstan, South Africa, Iran, and Uzbekistan. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has surged to 1,282. According to Nepal police, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan at 359, followed by Nawalparasi East with 218, Nawalparasi West 208, Nuwakot with 185, Rasuwa 140, Gorkha 72, Dhading with 60, and Danahu 38. Two more deaths occurred while victims were undergoing treatment at hospitals in Kathmandu. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority reported that as of last evening, 5,053 people were reported missing. Meanwhile, Nepal has also begun using DNA tests to identify victims. The government has constituted a 31-member joint parliamentary committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the amendment bill. Both houses of parliament gave their approval on the 12th of August for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. Office of the Chief Electoral Officer of Delhi has informed that the electors who were unable to submit their filled-in enumeration forms within the specified time, that is from the 30th of June to the 17th of August 2026, may file Form 6 along with the prescribed declaration form for inclusion during the claims and objections period, that is the 31st of August to the 30th of September this year. The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, is being observed across the country with religious fervor today. On the occasion, devotees observe fast, perform ceremonies and visit temples. Sweets and other food associated with Krishna are prepared and offered to Lord Krishna. Devotional songs and chanting is performed through the day and often late into the night. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. In women's cricket, Indian team has entered the semi-finals of the T20 Asia Cup after a massive 137-run victory over Hong Kong in Dubai last night. Batting first, India scored 193 for 5 in 20 overs, powered by Smriti Mandhana's historic 124 off just 64 balls. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, आइए इसी के साथ आपको ले चले हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है गजल। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसा सफर जहां अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस भी किए जाते हैं। कभी मोहब्बत की बात होती है तो कभी जुदाई की, कभी किसी की याद के याद दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। और इन सब एहसासों को अगर कोई सबसे खूबसूरत अंदाज में बयान करता है तो वो है गजल। गजल यानी चांद अल्फाज, लेकिन उनमें छुपे हुए जज्बात बेपनाह। आज की इस खूबसूरत म्यूजिकल सफर में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी गजलें जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाता है। तो थोड़ी देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ को एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और अल्फाज को दिल तक पहुंचने दीजिए। तो सबसे पहले गजल एक ऐसा नाम है जो गजल की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। जब आवाज में ठहराव हो, लफ्जों में नजाकत हो और एहसास में गहराई हो तो गजल सीधा दिल से बात करता है। और ऐसी ही एक खूबसूरत पेशकश है जगजीत सिंह की आवाज में चांदी जैसा रंग। इस गजल में मोहब्बत, हुस्न और एक महबूब की खूबसूरती को जिस अंदाज में बयान किया गया है वो इसे बेहद खास बना

तो श्रोता, आप सुन रहे थे ये गजल पंकज उदास की आवाज में। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली गजल की ओर। तो कुछ गजलें खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, उनके अल्फाज दिल में तो रह जाते हैं। और जब जो गजल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें रात है, दिन है, चांदनी है, हुस्न है और एक याद है जो शायद कभी पुरानी नहीं होती। तो आइए इसे सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

तो दोस्तों, अब ये गजल हम जो आपके लिए लेकर आए हैं उसमें भी रात है, चांदनी है, हुस्न है और एक याद है जो कभी पुरानी नहीं होती। नाम सुनते ही जैसे एक तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है, एक खामोश रात, चांद की रोशनी और किसी खास शख्स की याद। ये गजल उन्हीं खूबसूरत लम्हों के नाम जब रात थोड़ी और हसीन लगती है और दिल थोड़ा और करीब आ जाता है अपने एहसासों से। तो आइए इस चांदनी भरी गजल का लुफ्त उठाते हैं।

0: तो कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, कुछ अल्फाज दिल से कभी जुदा नहीं होती और कुछ घसले हर बार सुनने पर हमें अपने किसी पुराने एहसास से मिला देती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के इस गजल सफर में हमसे इजाजत लीजिए। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल। फिर मिलेंगे कुछ नए अल्फाज, कुछ पुरानी यादें और दिल को छू जाने वाले कुछ गजलों के साथ। तब तक सुनते रहिए, महसूस कीजिए सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart play pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360 degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Ma, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं एचआईवी टेस्ट करवाने के लिए।
4: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: अरे माँ।

0: समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में जिसे हम समर्पित कर रहे हैं उन वीर जवानों के नाम जो अपने घर परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा के लिए हर पल खड़े रहते हैं। सरहद पार खड़े हमारे आर्मी ब्रदर्स को शायद हम रोज देख नहीं पाते, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानी की वजह से हम अपने घरों से सुकून में रह पाते हैं। आपकी हिम्मत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम और देश के प्रति आपके समर्पण को दिल से सलाम। आप जहां भी हैं याद रखिए पूरा देश आपके साथ है, आपका हौसला हमारी ताकत और आपकी सुरक्षा हमारी दुआ। तो आइए आज की इस पेशकश उन्हीं बहादुर जवानों के नाम, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गीतमाला जो है फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं बॉर्डर 2 का ये पहला गीत जिसका नाम है इश्क का चेहरा।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV...
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता

30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज आधा प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: झुक जा।
1: तो श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s। ये गाने सिर्फ गाने ही नहीं है, वो अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आया है। तो शुरू में साथ ही है, आवाज में मिठास है और गीतों में जज्बात है। मोहम्मद रफी से लेके लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश और किशोर कुमार जैसे सुरों के जादूगरों की आवाज आज भी दिल को वैसे ही छू जाती है। तो चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s का अगला गाना, जहां हर गीत की एक याद है और हर सुर में एक कहानी है। आइए सुनते हैं इस गीत का नाम, जिसे आप सुनेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, तुम्हें देखा है तो ऐसा लगता है।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s। इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं हिंदी फिल्मी गीत की ओर।
1: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
2: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
1: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
3: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहर लगून डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
4: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
5: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सिलसिला इस गीत का, इस कार्यक्रम का जो है हिंदी फिल्मी गीत। तो आइए सबसे पहले गीत सुनते हैं। ये महाराज फिल्म का मोनाली ठाकुर की आवाज में आप सुनेंगे हाँ के हाँ।

0: दोस्तों आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा म्यूजिक का सिलसिला। आप कहीं मत जाइए, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Ma, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
4: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
5: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।

0: ओह नो हमारे बीच में वो नहीं होना चाहिए
1: क्या
0: जब लोग एसएमएस बीबीएम पर बातें करते हैं देन व्हेन दे मीट नथिंग टू से

0: कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: इस बीच भारत ने 2 विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी।

0: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक।

0: आकाशवाणी समाचार पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश होगा कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: अरे, पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
6: नर्स दीदी, क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
5: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
6: सच में दीदी?
5: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करें नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें।

0: एचआईवी संक्रमित सीरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
1: तो दोस्तों वक्त है पुराने दिनों में लौट जाने का, क्योंकि आप ट्यून इन कर चुके हैं अपने फेवरेट कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s पर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आज का सफर होने वाला है बेहद ही खास। आज हम निकल पड़े हैं 90s की उस सुहानी दुनिया में जहां प्यार का मतलब सिर्फ आंखों से होता था और कैसेट्स की टेप उलझ जाना सबसे बड़ा दुख हुआ करता था। तो अगर आपने भी वॉकमैन में कैसेट डालकर या ये गाने सुने हैं या आपने क्रश के लिए मिक्स टेप बनाई है तो ये 15 मिनट सिर्फ आपके लिए है। चलिए रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लीजिए क्योंकि पहला गाना आ रहा है।

तो दोस्तों, वह 90s का क्या मैजिक था। एक ऐसी आवाज और एक ऐसी मेलोडी जो आज भी सुने तो रोंगे खड़े हो जाते हैं। 90s के रोमांटिक्स के लिए तो ये एक एंथम हुआ करता था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक और टाइमलेस क्लासिक की ओर। ये वो दौर था जब कुमार सानू साहब की आवाज की हर आशिक की आवाज बन चुकी थी। तो देर किस बात की। तो ये लीजिए आपका और मेरा फेवरेट, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s और मौसम हो रहा है बिल्कुल फिल्मी, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा नॉटी। और अब बात करते हैं उस गाने की जो 90s में आते ही पूरे देश में धूम मचा दी थी। वो आइकॉनिक डांस मूव्स, वो रिदमिक बीट और माधुरी दीक्षित की अदाएं, ये गाना सुनकर किसी का दिल नहीं धड़का होगा। तो सुनते हैं चार्ट बस्टर ट्रैक धक धक करने लगा।

तो दोस्तों आइए सुनते हैं इस मैजिकल सेगमेंट के अगले ट्रैक में, अगले ट्रैक की ओर हम वापस चलते हैं उसी मूवी पर जहाँ से पहले प्यार की शुरुआत होती है। वो पहली प्यार का नजर, वो खूबसूरत गीत की बोल, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अगर आपका भी कोई स्पेशल कोई है जिसे आप ये डेडिकेट करना चाहते हैं तो फोन उठाइए या हमें मैसेज भेजिए। तो मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: श्रुता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से न्यूज हेडलाइंस अंग्रेजी में। मिशमी कमा श्रोताओं का कार्यक्रम और ताए खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड न्यूज।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो सेगमेंट और मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी। स्वागत है आपका आज के इस खास सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे बॉलीवुड के हर एक गरम मसाले की, चाहे वो लेटेस्ट गॉसिप हो या फिर इस हफ्ते सिनेमा घरों में लगने वाली बड़ी फिल्मों का हंगामा। तो अपने रेडियो का वॉल्यूम को एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब ये सेगमेंट होने वाला है एंटरटेनमेंट का फुल मीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े धमाके की, जो है यानी सितंबर 4 को आज बड़े पर्दे पर उतर चुका है। अरे, मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की। हाँ भाई, ओटीटी के बाद अब कालीन भैया, गुड्डू पंडित और कंपाउंडर का वो पुराना भौकाल बड़े स्क्रीन पर लेटेस्ट टेस्ट होने वाला है। गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रवि किशन जैसे सारी हैवी वेट स्टार्स एक साथ नजर आ रहे हैं। अर्ली रिव्यूज कह रही है कि एंटरटेनमेंट का भौकाल पूरी तरह से तो जिंदा है। तो अगर आपने भी अभी तक टिकट बुक नहीं किया है, तो इस वीकेंड का प्लान पक्का समझिए। तो चलिए अब थोड़ी नजर भी डालते हैं बॉलीवुड के गलियारों में कुछ चल रहा है। आपको याद होगा पिछले महीने डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश, जो नीम करोली बाबा के जीवन पर उनकी टीचिंग्स पर बेस्ड है, छोटे बजट में इस बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी हवा बनाई कि अब इसका दनका विदेशों में भी बजने वाला है। मेकर्स ने अनाउंस किया है कि होमबाले फिल्म्स, जो वही प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने KGF और कंतारा बनाई थी, और अब इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 11 सितंबर को ये फिल्म ग्लोबल ऑडियंस के सामने होगी। सच में स्ट्रांग वर्ड ऑफ द माउथ की ताकत क्या होती है, ये इस फिल्म ने साबित की है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी एक और गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। रणबीर कपूर और यश की आने वाली मेगा फिल्म रामायण पार्ट को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पर है। खबरें हैं कि रिलीज से पहले रणबीर और यश चुनिंदा शहरों में अपने फैंस से पर्सनली मिलने वाले हैं। और हाँ, 90s की कल्ट क्लासिक मूवीज की बात करें तो एक और बड़ी खबर ये है कि हे बेबी 2 को भी लेकर ऑफिशियल आहट आ चुकी है, जिसे सुनकर 90s और 2000s के बच्चे काफी खुश होने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: 隔离妈妈亦的个人身体吧是一位红路丈夫 HIV 隔是你的隔离派的姐妹的阿姨何看何里接待的一般的韩人的隔离都达到的蜜桂蜜康的样子吧安多的红路的何沙多的阿带的巴来的阿卡汤黑还有个淡烈我懂的将阿萨阿邦的淡烈萨林的门口门中的杂件人的抗议来门带来 HIV 各带来家里万诺哥汉人的爸妈帮本妈养尊养立台吧各拉人的阿妹的三诺人王各辈 HIV 各里同打拉汉人的爸妈阿达达昂阿波诺的哥各带来家里万的爸妈阿达达托主阿杰达昆还有爸妈帮助政策的吧 NationalAIDS Helpline 1097 ma tikto tokai eya ka pangnusan pakmale DHS nahalugan toke Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ji makhang aile kha kha kha ka chu ivai
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे वांचो भाषा में समाचार ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है तो दोस्तों आइए बिना रुके चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर अगला कार्यक्रम पेश है हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स और आपको वो पहली नजर का जादू तो शायद याद ही होगा जब रणवीर कपूर ने सोनम कपूर को पहली बार देखा था और मॉन्टी शर्मा का म्यूजिक और शान की आवाज ने मौसम ही बदल दिया था तो पेश है ये फिल्म सावरिया का वो टाइमलेस ट्रैक जब से तेरे नैना सिर्फ हमारे और आपके साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.1 मेगाहर्ट्ज़

तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत है इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म जाने तो या जाने ना का ये गाना, जो हर उस शख्स का एंथम रहा है जो किसी से अपने दिल की बात कहने से डरता था। ए आर रहमान का म्यूजिक और बेनी दयाल की एनर्जेटिक आवाज पे सुनिए ये खूबसूरत गीत, कही तो होगी वो।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद इदुमिश में भाषा में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है।
1: This is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
2: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Are, pehli baar maa banne wali ho, itni udaas kyun ho?
4: नर्स दीदी, क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
3: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
4: सच में दीदी?
3: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंश श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इदुमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
6: ऐसा आकाशवाणी ईटानगर सियालापुची EP मितुब्रेलिनी एतानीची इदुमिश में आहोला कीजिए दरगालंबो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में बुनी अनामा कानी बाजने मंगा मंगा मिलमा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर मचे GSLV रॉकेट माने EOS 0 स्पेस क्राफ्ट आदि आएगा बता होगा। EOS 0 में आदि एजर बासन हो तारो किलोमीटर यू माने इन छयामा इंडिया तिकाची लिखी कोको दने एचालो अथु शिवाय बौदा ला होगा महो ISRO में अली एगने एगो खोगा बबदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में नौगादा आहोगा। एदानी इंडिया मचे हिंदू इमु में जन्माष्टमी कृष्ण आला इनी एनागा महो अतिकाची इमु के बाद इपाइगा बना ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक में लगादा आहोगा। कृष्ण में इमु के बचे यो फुमा इत्याऊ आश्यामो इपरागा गवर्नर में लाहेगा। कृष्णा में अतिका मची इमु के बा खो नोगा इगनाओ के बने जरूर बदा लगादा आहोगा। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मचे स्पेशल सेशन है एचला पुचे हियू ने हिखिनी मची ने अखगाव दा ला होगा। आ सेशन जी एरगाव मा जौनेव ची पोचे जगाव चा स्पीकर तेसंग पोंगते में बुनी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी BAC ची मीटिंग जिनेगा मा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर PD सोना डिप्टी स्पीकर कार्डो निगियोर दो ने MLA कुमार वाई में जिन बेगा बता ला होगा। तवांग डिस्ट्रिक्ट मचे वुमेन दो ने चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बुनी DC कॉन्फ्रेंस हॉल माने याकूदो ने आलम्रो बुजा अजितला कानून आचुची पो लाजो प्रोग्राम अखने मा CT प्याजा दुंदुक पेमा में चिचाय बने याकूदो ने किशा इमो आलम्रो में आया चुची पो पे आसगा जिगा लाजो तगा अरुण तगा लाए बदा आहोगा। अली लाजो प्रोग्राम आखगा मा तवांग अतिको खाजिगा गवर्नमेंट दो ने प्राइवेट स्कूल मामाची आजो आहिटया दोने आहिया इमु उखो गया बदा ला होगा। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट रायंग अतिवची गुमिन पांगिन में अरुणाचल प्रदेश माचे एहन दो कथक नायगा इमु शाबमा हो आया है। मैं दिल्ली माचे दूरदर्शन में बी ग्रेड हागा बदा होगा। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री वाने CCRT स्कॉलरशिप अवार्ड रायगा पांगिन में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति माचे कथक आहेगा गौरी दिवाकर गने कथक ना आहे तो लचिदा ला होगा। अपर सुबंसरी डिस्ट्रिक्ट ताक्सिंग अतिकाचे हाथुमुंगा जिगा इंडियन आर्मी माचे चौपाहे आलम्रोगा ताक्सिंग अतिका एपेगाचे इमु आलम्रो में हाथुमुदने किसा अरुंदान जियांदो गीते हगा दा आओगा एल आई सी आती पाहिम माली बा गाड़ी ठू है आए छे गने आर्मी में आंजी अरुण दादो ब्राचा ने आगु गिहिगा जिदा ला होगा अबू ने नया अरुणाचल प्रदेश मचे इस कमिंग पपुम परे लोअर सुबनश्री नामसाई चांगलांग दोने तिराप डिस्ट्रिक्ट मचे आतिका प्रागमा आयो सदा ने ईटानगर मीटियोरोलॉजिकल सेंटर मचे में ला होगा ने आतिका खेगनी मा है अरुण मैया दोने अबुलु चेम्बम्बो नापा आयो सदा ला होगा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन कोकोमान एंड कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन में बुनी नाहलगन मचे साई एस टी सी सेंटर मान एम इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप आखनगम महो आमा तांगो मे आ याकू मे आ बॉक्सिंग चोया इमु तांदो मे एम बेगा मुदा ला होगा एतानसी इदुमिस्मी आहो अलिमा ओन दबाए
0: एच आई वी एम बे चिपो असवे आउदा खागा
7: एच आई वी हम बे है एच आई वी गिला मिंग ची इयु घर दोगा गे कांदु ने जी तोगा गे एच आई वी हम बे गिला इंजेक्शन थापो बीजी ची था दोगा गे माने एच आई वी खी अलि ओदा एच आई वी
0: श्रोता भी आप सुन रहे थे इदुमिश्मी भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफ एम 103.5।

1 मेगाहर्ट्ज़ है। चलिए दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसी खूबसूरत और सोलफुल मेलेडी का जो कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क के जज्बातों में हम एक अलग ही सफर पर ले जाएंगे आपको। तो अगर आप भी सुहानी फ्राइडे की शाम को अपने किसी अपने के साथ यही खूबसूरत वाइब फील करना चाहते हैं तो दिल थाम लीजिए, सुने ये प्यारा ट्रैक सिर्फ हमारे और आपके साथ।

0: क्या हुआ?
1: Let's get married.
0: What?
1: मुझसे शादी करोगे?
0: नहीं माया, what?
1: Come on, Sam. हिस्ट्री में पहली बार एक लड़की अपनी नीज पे बैठ के एक लड़की को पूछ रही है. प्लीज डोंट स्पॉइल द मोमेंट. क्यों नहीं?
0: क्योंकि मैं वो साम नहीं हूँ जिससे तुम कॉलेज में जाती थी.
1: आई डोंट केयर समीर.
0: जो मेरे साथ हुआ है उसके वजह से जिंदगी भर मुझे शक से देखा जाएगा.
1: आई डोंट केयर मेरे साथ क्या होगा. एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर.

दोस्तों, और इस प्यारे से नोट के साथ आखिर वो दिन आ ही गया है जिसका हम पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं। आप सभी को हैप्पी फ्राइडे। दोस्तों, हफ्ते भर की थकान को पीछे छोड़ दीजिए और अपनी वीकेंड को जी भर के एंजॉय कीजिए। चाहे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस वक्त अपनी गाड़ी में हैं, ऑफिस से घर लौट रहे हैं या वीकेंड ट्रिप के लिए कहीं निकल चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। ट्रैफिक ज्यादा हो सकती है, इसलिए आईज ऑन द रोड। दोस्तों, थोड़ा संभल कर ड्राइव कीजिए क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। और कहीं मत जाइए, अपना फेवरेट म्यूजिक यही सुनते रहिए क्योंकि आगे और भी है और जबरदस्त गाने आने बाकी हैं। तो आइए, इसी के साथ आपको मैं ले चलती हूँ नॉस्टैल्जिया की ओर। आइए सुनते हैं ये फिल्म नील एंड निकी का टाइटल ट्रैक। शायद ये अर्ली 2000s के म्यूजिक लवर्स के लिए शायद ये बहुत ही बेहतरीन चॉइस होगा क्योंकि शायद आपको ये गाना पता होगा। तो लीजिए, आप सबके लिए ये गीत पेश है।

चलिए दोस्तों, अगला गीत मैं उन सभी यंगस्टर्स के लिए मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ जो सुबह रोज अलार्म स्नूज करके सोते हैं, जिन्हें अभी तक अपनी लाइफ का एग्जैक्ट गोल नहीं पता

या जो बस लाउड इस बस दौड़ भाग में अपनी रियल खुशी ढूंढ रहे हैं, तो आइए ये गीत आप सभी के लिए है जो वेकअप आप सभी को करने का आप वेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी कॉलेज लाइफ से निकलकर कॉर्पोरेट रैट रेस में फंस गए हैं या बस थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए एक जेंटल वेकअप कॉल है।

0: श्रोता, आपको बता दूं कि इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लुसी, और आइए कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक दी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता के नंद कुमार। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी तीसरी प्रसारण सभा जारी रहेगी और उसी के लिए आरजे अपर्णा स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। तो मुझे दीजिए आज्ञा, शुभ दिन, नमस्कार।
1: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तानसा समाचार। अगर आप हमारे तानसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि चरित्र एक वृक्ष है और मन एक मान एक छाया। हम हमेशा छाया की सोचते हैं, लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है, अब्राहम लिंकन ने ये कहा है दोस्तों। आज अब्राहम लिंकन के इस पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसन्न सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। संचर निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की तहे दिल से स्वागत करते हुए आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा मौजूद है आप सभी की खिदमत में। करने आई है एक बेहद रंगीन और खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस शुरू करेंगे ये हम अब से कुछ ही देर में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
3: नर्स दीदी, क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
2: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
3: सच में दीदी?
2: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहे, HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
4: गुड इवनिंग ईटानगर।

गुड इवनिंग ईटानगर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वो कंपोजिट प्रोग्राम है जिस पर हम न केवल आप सभी की मनोरंजन करवाते हैं बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि खास इन्फॉर्मेशन आप सभी से साझा भी करते हैं। आज 4 सितंबर है तो चलिए देख लेते हैं कि देश विदेश में आज के इतिहास के पन्नों में क्या राज छुपे हुए हैं। जी हाँ,

आज ही के दिन 1781 में लॉस एंजल्स शहर की स्थापना स्पेनिश सेनेटर्स द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडाक नाम का ट्रेडमार्क किया और रोल फिल्म्स के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 1928 में वैज्ञानिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा बनी। है ना दोस्तों, ये बेहद बेहद खास बात। 1948 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के खिलाफ भारतीय सेना ने कार्रवाई की योजना पर काम तेज कर दिया। 1957 में आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस में पहली बार औपचारिक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1976 में नासा के अंतरिक्ष यान विकिंग्स 2 मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था और वहीं की तस्वीरें की जानकारी दी थी एवं उसके बारे में जानकारी दी थी और तस्वीरें साझा की थी। एक और खास बात, 2016 में वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को सेंट घोषित किया था आज ही के दिन, यानी कि 4 सितंबर को। तो वैसे दोस्तों, आज जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अब हम आपको बेहद प्यारे प्यारे गीत सुनाने वाले हैं। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद रोमांटिक सी गीत के साथ ही हमारी आज की गुड इवनिंग ईटानगर की ये जो सेगमेंट है अब यही पर संपन्न होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। अब से बस कुछ ही देर में दोस्तों आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग और आसपास के गांवों के लोगों द्वारा स्वेच्छा से एलएसी से लगे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते की अध्यक्षता में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। महिला एवं

0: बाल विकास विभाग तवांग द्वारा महिलाओं और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। ईस्ट सियांग जिले के राया निवासी गोमन पांगेंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बने। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के छठे संस्करण का नाहरलगुन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAISTC सेंटर में शुभारंभ। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा है कि ये राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। इस दौरान श्री मोदी ने कहा है कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के युद्धवाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा है कि वो दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने के लिए उत्साहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
3: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक रिटायर्ड ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कामना की है कि ये पवित्र त्योहार सभी को प्रेम, करुणा, सत्य, सद्भाव और अनेकता में एकता जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की याद दिलाती है और उनके जीवन व शिक्षाओं का उत्सव मनाती है। उनकी कालजयी समझ मानवता को हमेशा रोशन करती।

0: महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग द्वारा डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CDPO तवांग दोंदु पेमा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कल्याण, गरिमा और अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनों, योजनाओं और संस्थागत सहायता तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया। ईस्ट सियांग जिले के रायंग निवासी गोमुन पांगेंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बन गए हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित बी ग्रेड कलाकार का दर्जा प्राप्त किया। इस उपलब्धि के अलावा गोमुन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली CCRT छात्रवृत्ति के भी प्राप्त करता है। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग तथा आसपास के गांवों के लोग स्वेच्छा से आगे आए हैं। ग्रामीण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC से लगे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में मोटर योग्य सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिन और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बावजूद ग्रामीण सिर पर सामान ढोकर आवश्यक वस्तुएं सेना तक पहुंचा रही है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के छठे संस्करण का नाहरलगन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI STC सेंटर में शुभारंभ हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम है कौशल, एकाग्रता और खेल भावना की भावना का उत्सव मनाना। चैंपियनशिप में पूरे क्षेत्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदारी देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आए विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 959 लोगों की मौत हुई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Apu Gopak. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS O-5, India's first ever imaging satellite from geosynchronous orbit. In a social media post, Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said, "The mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services." The Ministry of Home Affairs will make available services of the Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and Laboratories of the National Forensic Sciences University Laboratories for DNA profiling of first-degree biological relatives of missing persons from India following the flash flood in Nepal. The Ministry of External Affairs has said first-degree biological relatives residing in India may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification. Subject to the technical requirements, communicated by the Nepali authorities. The helpline number in this regard is +977 9841 616095. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has surged to 1,282. According to Nepal police, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan at 359, followed by Nawalparasi East with 218. Two additional deaths occurred while victims were undergoing treatment at hospitals in Kathmandu. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority reported that of last evening, 5,053 people were reported missing. Meanwhile, Nepal has also begun using DNA tests to identify victims. Aircraft Accident Investigation Bureau has released the preliminary report on the Air India Phuket-Delhi flight, which encountered a turbulence en route to Delhi, wherein some persons on board had received injuries. According to the report, both flight crew were subjected to psychoactive substance detection tests. The sample of pilot in command was found non-negative. Subsequently, blood samples of both the flight crew were sent to the pathological laboratory for confirmatory test. The confirmatory test report of pilot in command was found non-negative, whereas the sample of the co-pilot was found negative in both the tests. The National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, has rescued more than 3,800 children from child labor during its Pan India Rescue and Rehabilitation Campaign. More than 575 FIRs were also registered during the campaign. The Ministry of Women and Child Development said that the campaign was launched on the 12th of June and continued till the 31st of August. During the campaign, the NCPCR coordinated with state governments and union territory administrations, district magistrates, labor departments, police authorities, and other stakeholders to intensify the identification, rescue, and rehabilitation of children engaged in child labor and those vulnerable to trafficking and exploitation. The Office of the Chief Electoral Officer of Delhi has informed that the electors who were unable to submit their filled-in enumeration forms within the specified time, that is from 13th June to 17th August 2026, may file Form 6 along with the prescribed declaration form for inclusion during the claims and objections period, that is 31st August to 13th September this year. The Commission said that the electors may file Form 6 to include their names in the final electoral roll to be published on 4th November this year. That's all in this news bulletin. Namaskar.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
4: अंगांगा ना रंजा थासन आकाशवाणी ईटानगर टिप्पणी वाला रंजा वन बंगा बाजी से पढ़ाने रहे नानोक टेको बच्चों तारे तजा सितंबर चौवन बली तारीख हो कुछ बच्चा को बच्चों को यहन जाफंग ता जाऊंगा अडे खबर है चौतान मंगन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मा इंडिया ही खबंग ठुन जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट वा इमेजिंग सैटेलाइट ईओएस ओ फाइव पा हन लामा जीएसएलवी एफ 17 सक्सेसफुली लॉन्च हुन था न्यारंग रवाजा अडी का सोशल मीडिया पोस्ट ने मा मोदी मा अरे सक्सेसफुल लॉन्च होने की पमा इंडिया ही स्पेस ने नंग एक्सीलेंस इनोवेशन ले ग्रोइंग कैपेबिलिटीज पर जो खेस होए कांगा मचो ठोको बाजा अरे को आईएसआरओ ले इंडियन इंडस्ट्री ने तुंगवा पार्टनरशिप असन रंग एका पमा दिया खे स्पेस प्रोग्राम में नंग अन्यान रंग ले स्केल पर जो ले चोको एका गाले मोदी मारे पा ठाकठोली अचीवमेंट जो गांव में जो ठोको बाजा गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाइक मा जन्माष्टमी रंगोजा को स्टेट व मिजाने ना विश बहुन बाजा अधिकार फेस्टिवल पमा हुनमिंग वैल्यू कंपेशन तुंगतंग हांटी ले प्लूरलिज्म पा अंगांगा मा ट्विंग कप्रांग इंस्पायर हुन रंग रंग पा सोम बाजा अधिकांग इन चोटो कुटा को अरे फेस्टिवल पा जोबान लॉर्ड कृष्णा छठ रंगवो अटेरुअ डॉ

0: ले हे ठोपा रंग मानी है जो गामा जो ठोको बाजो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन पी डी सोना मामाजा वन सेट अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है वन नीट लॉ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी सीटिंग खुन तों वक्ता को जो नोक बाजो अरिगो ए पी एल ए स्पीकर तेसम पोंगते मा चेयर होन लामा मुंग ठुंटा को हाउस से बिजनेस प्रोपोज होने का ले होगमेन लेजिस्लेटिव असेंबली रंग बिजनेस लीज से फाइनल होन रंग मुंग पर ठुन बाजो अधिक सोशल मीडिया पोस्ट ने मोना माम अरे रंग रंग नीन थोमिन पंजा रंग अलमली चेरंग मंगाट को हाउस से बिजनेस पर खोआ लम्बा हो रंग जो लम्बे का गा मचोटो को बाजा इस सियंग रायंग वा गुमिन पंगिन पम अरुणाचल वा न्यू दिल्ली वा दूरदर्शन हे मा बी ग्रेट आर्टिस्ट स्टेटस को एक खबंग कथक बुआ ते जाऊ अधिक पंगिन माम अरे ले को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वा सी सी आर आई स्कॉलरशिप मिंचो बाजा अधिक पंगिन में कथक नंग प्रभाकर पर अलाहाबाद व प्रयाग संगीत समिति को व ताहोन वाले अजत कथक गुरु गौरी दिवाकर खन को ट्रेनिंग होन वा जाऊंगा मैं जो चोटो को एक मिथोलॉजिकल सेंटर ईटानगर हेमा ईस्ट कमिंग लोअर सुबनसरी पाके के संग पपुम परे शी योमी नमसाई चांगलांग लतीरा डिस्ट्रिक्ट है रंग येलो अलर्ट पर जोलूसी को एक अधिकोर डिस्ट्रिक्ट है नंग रंगमोक रंगफा दम नंग रंगडोंग वोंग इपा दा जोंगा मजो चोथो कोइगा इंडियन आर्मी है नंग हुंग छेत मा टक्सिंग वा मिन्यान है मा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जत्री जंग को वा ड्यूटी मोते सिपाही है वोंग छा ल लिहान समा है मेजा मा हन पे को रंग जो मा नंग वोंग वगैरा अधिको हा दा ते है मा समा है खो को हन ला मा कमका दान ला मजो हन कोइगा अधिको हा डांग ते हेमा इंडियन आर्मी हे नंग ठेंग मा मतो ताई का हो हाय पाई हो ने जोंगा मा मिन चुठो को बाजों अधिको रे काम ने मा मिन्यान हे हुं खन मा पेट्रोटिज्म ले कमिटमेंट पे जाओ खे की ना मा मिन चुठो को बाजों नाहरलगन वा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई साई एसटीसी सेंटर को मजा वने रोकलो इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर बंगवा जाओ अधिको रे पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन हेमा अरुणाचल एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन है बैनर खन को सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ स्किल फोकस एंड स्पोर्ट्समैनशिप टीम खन का जो लोम टू गेगा गाने खियन पर रीजन खन व सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स जूनियर बॉयज यूथ ले इलाइट मेन्स एंड वीमेन कैटेगरी को इलोम वगा जो तेजा नानुक टेखो पर दत्तो को जो लाथोन मांगता
1: एचआईवी पावान ते क्वेंचची आर क्वेंचत वा पेरंग असंथम मा चोजत पासन
0: एचआईवी क्वेंचत विंगते हे सेफ्टी अहो थंग मा दिहक दमनम रोमजु क्वेंचत विंगते नंग सोले वा बीजे सिरिंज सोले ने न्योंग वा छानंग मिन ताले मिन जो
1: हमा आर निन पा हुनंग थिनन रूम टोंग दक पक मिन खित मिन जम रूम छाला मिचिक तक को एचआईवी क्वेंचत पा नंग जात मा
0: एचआईवी क्वेंचत पा सोक टुक रेमिन होमवे को क्वेंचत पा जदलोटी को सोक टुक पमा रोंडोंग लो ता हिंग मिन जो एचआईवी खोंचत रान नक चेन अजाजा खोबत बा जोनन खोंचत पा सोकटुक रेयन खोंचत जुन मा मी अनंग महुन मिंजो अरे खोंचत खोको अजाजा निन चोजत रंग नेशनल एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 को फोन होनन अरे खोबत पा अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डीएचएस नाहरलगन नेवा पब्लिक है हुबिदा रंग जो लोसे देगा
2: अरे खबंग से प्रोग्राम को रियांग वांग होसाई वा रुन्या से चुतान मंगन

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते समाचार। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों, जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे साथ चंद लम्हों का ये खूबसूरत सफर तय करना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों FM बैंड के 103.1 MHz पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM पर। अरुण FM जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। तो आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
2: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
1: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
3: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
4: सुपीरियर हैंडलिंग स्टाइलिश लुक एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ब्रेजा कम्स विद सुपरस्टार 9-inch स्मार्ट टेप प्रो प्लस विद सराउंड सेंस बाय आर्किमिस। इट हैज 6-speed ऑटोमेटिक 360-degree कैमरा व्यू, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, Special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इवनिंग ड्राइव में। आज का दिन बेहद ही खास है दोस्तों। आज का दिन है भक्ति, उल्लास और प्रेम से सराबोर होने का, क्योंकि आज ही के पावन दिन मथुरा की पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। जी हाँ, तो आज के इस सेगमेंट में हम जो है दोस्तों आप सभी के लिए प्ले करेंगे कुछ खास धुन और कुछ खास गीत जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, आज लॉर्ड कृष्ण को हम डेडिकेट करेंगे बॉलीवुड ट्रैक्स से। जी हाँ दोस्तों, भगवान तो सब कुछ समझते हैं, है ना। तो बॉलीवुड ट्रैक्स में भी उन्हीं के नाम से जो है आज गोविंदा गोविंदा कह रहा है, तो हम इवनिंग ड्राइव को डेडिकेट कर देते हैं और आप सभी को भी झूमने पर जरूर मजबूर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए झूम जाते हैं आज की शाम लॉर्ड कृष्ण के नाम, जन्माष्टमी के नाम पर।

मशहूर सारी नगरी रे आया फिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे।

0: तो दोस्तों, इस झूम जाने वाली ट्रैक्स के साथ ही हमारी आज की इवनिंग ड्राइव की जो ये सेगमेंट है अब यहीं पर संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी गीतों के साथ झूम गए होंगे। महरान ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं शाम की महफिल में कुछ बेहतरीन नगमों को लेकर, आपकी शाम को खास बनाने हाजिर हो जाएंगे हम सब। बने रहे आप सब अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: अरे, पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
4: नर्स दीदी, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला। सच में बहुत परेशान हूँ।
3: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो। सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
4: सच में दीदी?
3: हाँ बिल्कुल। आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करे। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहे। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहर लगून, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल से दिल तक बात पहुँची।

जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो बस ऐसे ही लेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी खास का, या दूर बैठे किसी खास के साथ बातें कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्संस को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ इंतजार में हैं, तो उन सभी के, आप सभी के शाम को खास बना देने के लिए हम लेकर आते हैं दोस्तों शाम की महफिल, जहां हम बजाते हैं सूदिंग सोलफुल बॉलीवुड ट्रैक्स सिर्फ आपके शाम को खास बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं मेरे साथ सभी साथी यानी कि संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद मेरे सभी साथी, ये हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम कुछ खास प्ले करें, कुछ खास बातें करें और आपके शाम को एक बेहद रोमांटिक, खूबसूरत और एक सुकून भरा शाम जो है इसे हम बना दें अपने गीतों के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शाम के इस खास पल को गीतों की कारवा से बांध देते हैं, प्ले करते हैं कुछ खास, है ना। कभी कभी किसी का इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं होता दोस्तों, वो एक उम्मीद होती है, एक वादा होता है कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, दिल उसी शख्स के लौटने का राह देखता रहेगा। जी हाँ, तो आज शाम उन सभी नामों के नाम जिनसे दूर होकर भी दिल कहता है तुम आओ या ना आओ, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में मंजिल से ज्यादा खूबसूरती होती है उस तक पहुंचने की उम्मीद, है ना। तो पेश खिदमत है आप सभी के लिए ये खास गीत, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, फिल्म स्वामी के इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपके शाम को खास बनाने में हम आज कामयाब हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि शाम के ठीक 6 बजे का वक्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक सॉन्ग्स का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: माँ, अम्पी और मैं हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
1: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
0: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें? यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
3: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
4: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

में तेरा ख्याल आता है, डूबते सूरज के साथ तेरा प्यार याद आता है। ये शाम भी कितनी हसीन लगती है तेरे साथ, जब तू पास हो तो हर पल इश्क बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, धुएंदार इश्क भरे गीतों को आप सभी तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, FM बैंड के 103.5 मेगा हर्ट्स पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से, जो करता है दिल से दिल की बात और पहुंचा देता है आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।

दोस्तों, फिल्म हरे कृष्ण हरे राम के गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे आदि समाचार। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: 이마다 proper planning 내록가 meaningful discussion은 이보시토. 오르나살 프로세스로 governor KT 파르낙부 젠 마스타미 로 occasion 로 state 솔로 아미타카맘 아이루파 아감 빌릭토. government 벨루도네 젠 마스타미 시 private festival pravitra festival 코파 이둥 데록가 솔로 아양 아프리카남 아코넴 아양 돌라 예보시남 데록 아로 아곰 루돌라 아미타카맘 Lekodola, Santipa, Yevosinam, Festival Kopa Idung. Deloke Jan Mastami Solo, Lord Krishna, Divine Birth, Pavitra Janam, Mupang Sidola, Ibomdung. Prime Minister Narendra Modi, GSLV F-17 rocket, successful launch inam, Airupa Koito. Rocket Ara Solo, EOS 05 satellite Kokadung. EOS 05 satellite solo agere space lock art sim potolado la information dem kalek iladung modilo don space technology si strong alodung indian solo new technology innovation mi rupa ibom dola space sector lock capability m improve dola isro elang indian private industry leko dola agere sim mi rupa ibom dungam nalukanto taxing area log dolung ami kidar indian army am airupa igurbomtung lac line of actual control china border lo gari badang kamang kamang ko jega lokom indian army and duty am airupa ibomdung gari badang kamanam lega pa dolung ami kidar donam tina mem army kem lo pa galik bidung taxing area log dolung ami kidar lukanto na bulu army kidar am adit ko de igur ladu de igur ye am lalukanto Melo tawang DC conference hall lo pevo ko iboto pevo solo ana ko kidar lo soil protection lo ayon de lo ke government scheme lagang em lukan bito pevo sim women and child development department na iboto pevo solo government teacher elang private school lo teacher kidar ekom dumen gato tawang lo CDPO dondu pema bi lukan dona ana ko mima kidar lo lo de lo ke scheme lagang em ken pala kitung ken dola इज्जत एम ब्लेसिंग सिबम दोला पाला पेनम अति तकम एम पाला दो पेलुकंतो मेट्रोलॉजिकल सेंटर इतानगर लुकांदो न येलो अलर्ट लो इज कमिंग लुअर सिवन सिरी पक्की के संग पपुम पारे सीओमी नामसाई सांगलांग एंड तिरप डिस्ट्रिक्ट एम वार्निंग बितुंग लुपावी नाम जेगा सोलो पोजिरु पे दोमुर हिलिंग आलादुंग एसएआई Sai STC Center Naharlagan no 6th Inter Club Boxing Championship am Malokalongalo Iropto. Kili kisinam sim Capital Complex Amateur Boxing Association na Ibodola, Arunachal Amateur Boxing Association amun log Iboto. Kili kisinam solok team sa Skill Pokas and Sportsmanship am Lubom Dola. Kili am Airupa Ibom Dopa. Kili kisikosolo. को किधर है कम बोझे को आतो देलो के अब ना बॉक्सिंग के लिए ना किधर है कम बोझे को आमन गतो सब जूनियर मीमा मिलो देलो के जूनियर मिलो को यूथ एंड इलाइट के तगरी लोकों कंपटीशन माय रूप पे इवो ये इस यंग रायंग दोलों लोग गुमन पंगेंग बे और नसल लोग पर्स कतक दें सर पे इगे कहे पिम्दल ही दूरदर्शन है बी ग्रेट आर्टिस्ट लोग स्टेटस एम बितो देलोक के भी स्कॉलरशिप एम कॉम सीसीआरटी स्कॉलरशिप एम कॉम पातो स्कॉलरशिप सिम सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट लोक कल्चर मिनिस्ट्री है बिदुंग
1: सुफक आदि लुतादम तारोंगम एचआईवी लगान को लुकान पोये
2: गोलुता काम एचआईवी के नाम लगा सिम आई पर केन पर लगी दुंग
1: एचआईवी के नाम से आई माना ये कैदपो दो बोसिनाम इंजेक्शन अतल अमी यूज बोसिनाम देलो अन्य एचआईवी गमलो उम्म आवलोकम आसुन सिलादुम
2: इदोकम होदाय केंगा फलांगा एचआईवी के नाम से अलग हो रखे नाम दो बोसिनाम गम रखे नाम दबो ते बो हनाम देलो तमित तसरुंगु रकलो एचआईवी के नाम से आहुन हमं
1: देलो क्यागु एचआईवी गदुम मुस्ते मलो ट्रीटमेंट इगोर सिदोला अधिंग रूपा येनाम येलाये एचआईवी के नाम लगांग से मायरूपक के नाम लगा पर नेशनल एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 लगा कुदा 1097 सोलो कॉल दोला इनके लाये

सुपक ऐसा ही भी आवागम तरोंगम अकिन बोको के गयक सोलों गिद आवंग को तत्पाया।

0: दोस्तों, अभी आप हमारे आदि श्रोताओं का समाचार सुन रहे थे, यानी कि आदि बोली में समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं इस बेहद चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, जी हाँ, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि आज के इस बेहद चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आपके राह के हमराही बनकर साथ साथ चल रहे हैं संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं बनी हुई हूँ, यानी कि आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा बनी हुई है आप सभी की खिदमत में करने आई है एक बेहद खूबसूरत सी शाम के वलाप दोस्तों के नाम। और बस कुछ ही देर में शुरू करेंगे हम, जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार का ये सेगमेंट। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, तो सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: अरे, पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
2: नर्स दीदी, क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
1: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
2: सच में दीदी?
1: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार के इस बेहद खूबसूरत सी सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, ये वो सेगमेंट होता है जहां पर हम फिल्मी जगत से जुड़ी हुई, जी हाँ, एक्टर एक्ट्रेस हो या गीतकार हो, फनकार हो, अदाकार हो, संगीतकार हो, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई सभी हस्तियों के बारे में, हम जाने माने हस्तियों के बारे में बातें करते हैं, उनकी चुनिंदा फिल्मों के सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने एक ऐसी अदाकारा के बारे में बातें करने की सोची जो 70 के दशक में बेहद पॉपुलर थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जी हाँ, बेहद खूबसूरत दिखने वाली और आवाज की दुनिया की एक और क्वीन जिन्हें हम कह सकते हैं, वो थी हमारी सुलक्षणा पंडित। वैसे दोस्तों, इन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनका जो मेन मोटिव था, कहते हैं कि इनका जो मेन मोटिव था फिल्मों में आने का, एक्चुअली वो एक्टिंग नहीं थी, वो सिंगर यानी कि गायिका बनना चाहती थी। हालात ने उन्हें सिंगर से एक्ट्रेस बनने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था, और जहां उन्हें जो है शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिली, और ये जो है एक गायक परिवार से बिलोंग करती थी। जी हाँ दोस्तों, सुलक्षणा पंडित ने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा, और जो है कहते हैं

0: हेरा फेरी 1976 में, और धर्मकांटा, वक्त की दीवार, खानदान और अमानत जैसी लोकप्रिय फिल्में भी बनी, जिनमें इनकी आवाज को सुनने की जो है अब भी इनकी आवाज महकती है उनके गीतों में। जी हाँ दोस्तों, तो बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो चलिए आपको सुना देते हैं उनके फिल्मों से चंद नगमों को, जो कि उन्हीं की आवाज में उन्होंने खुद जो है अपनी आवाज से नवाजा है इन गीतों को। तो एंजॉय कीजिए सुलक्षणा पंडित के गाए हुए फिल्मों के गीतों को।
1: शिमारू के नए

दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि सुलक्षणा पंडित के कैरियर को जो है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने जो है पॉपुलर होने नहीं दिया, और जो है इनको ये बात बहुत लोगों ने कहा है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले की उस वक्त बहुत ज्यादा चलती थी, तो उनके सामने में किसी और गायक कलाकार स्पेशली गायिका को जो है ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिलती थी, और इस वजह से सुलक्षणा पंडित के जो है गायक गायिका की जो दुनिया में उनको जो प्रसिद्धता मिलने वाली थी उनको नहीं मिली, और वो जो है एक्ट्रेस के रूप में काम करने लगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनको

अभिनेता संजीव कुमार से प्यार हो गया था और वो प्यार एक तरफा था क्योंकि संजीव कुमार ने उनको ये कहकर नकार दिया था कि वो उनसे कभी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनके खानदान का जो पुरुष वर्ग है वो वर्ग कभी भी 50 साल के ऊपर के उम्र को क्रॉस नहीं करता। सब जो है 50 इयर्स होते होते ही स्वर्ग सिधर जाते हैं, इसीलिए वो जो है इस डर से सुलक्षणा पंडित से वो शादी कभी नहीं कर सकते। और वाकई में ये भी हुआ कि इनकी प्रेम कहानी जो है अधूरी ही रह गई क्योंकि संजीव कुमार का जो है देहांत जो है यूं ही 50 साल पूरे होने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इनको इतना गहरा सदमा लगा कि इन्होंने कभी शादी ना करने की कसम खा ली और अपने पूरे जीवन जो है ऐसे ही संजीव कुमार को प्यार करते ही उन्होंने गवा दिया। जी हाँ दोस्तों, और अकेले रहने लगी। ये वही विजेता पंडित की बड़ी दीदी है जिसने लव स्टोरी जैसी फिल्मों में काम किया था। दोस्तों इनका कैरियर और इनका जो है बहुत खूबसूरत रूप के कारण भी, ये अपने रूप सुंदरता के कारण भी बहुत पॉपुलर रही, बड़ी बड़ी आंखों वाली सुलक्षणा पंडित, और साथ ही इनके गायकी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। इनका मैक्सिमम फिल्म्स जो है संजीव कुमार के साथ, जितेंद्र के साथ देखा गया है। हालांकि बहुत दिन बीमार रहने के बाद 6 नवंबर 2025 को ये दुनिया को अलविदा कह गई और हमारे बीच अपनी यादों के जो झरोके हैं फिल्मों के रूप में और अपनी आवाज के रूप में छोड़ गई हैं। तो अगर आपने अभी तक सुलक्षणा पंडित की कोई भी फिल्म नहीं देखी है तो आप उलझन, अपनापन, संकोच, संकल्प, हेरा फेरी, धर्म काटा, वक्त की दीवार, खानदान और अमानत जैसी फिल्मों को जरूर देखिएगा। बहरहाल मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक और प्यार भरा गीत आप सभी को सुना देती हूँ और कर देती हूँ इस सॉन्ग को डेडिकेट सुलक्षणा पंडित जी को, जो आज हमारे बीच नहीं है। आप सब इस गीत को सुनिए, एंजॉय कीजिए और उनकी मूवीज को जरूर देखिएगा दोस्तों।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की कलाकार का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे इस सेगमेंट में एक्ट्रेस एंड सिंगर, जी हाँ, सुलक्षणा पंडित के गाए हुए चंद गीत और जिन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था उन फिल्मों से कुछ नगमों को हमने आप सभी तक पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का, तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको हमारे साथ सफर को तय करनी है दोस्तों, अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी जी हाँ एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल मैं बता दूं कि अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक आप सभी के साथ बने रहेंगे संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ। मैं रहूंगी आप सभी के खिदमत में मौजूद, आप सभी के अपने आरजे अपर्णा। तो दोस्तों, बैक टू बैक सॉन्ग्स को मैं प्ले करूंगी आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स इस खूबसूरत सी शाम में।
1: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं एचआईवी टेस्ट करवाने के लिए।
2: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
1: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम किया है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा एचआईवी टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
3: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री एचआईवी हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें, एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टर।

0: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch.
1: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे।
2: Namaste listeners, a very warm welcome to all of you as we have come together for another edition of our weekend special magazine show. I'm your host Zulekha Topiwala.

दोस्तों, आप सुन रहे थे वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम, जिसे पेश कर रही थी जुलेखा टोपीवाला। तो चलिए अब आपको सुना देते हैं कुछ धुएंदार गीत। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय कीजिए।

真的。

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज के हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अभी यहीं पर संपन्न होता है। आपसे बस कुछ ही देर में दोस्तों आप सब आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ, आप सभी का बेहद ही चहेदा प्रोग्राम यानी कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
3: जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल।
2: जी जी नमस्कार।
3: शिवा लोहर टाइम टी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम, आपका नेमित श्रोता।
2: जी जी बोलिए जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मैम, पहले तो आपको और सभी सुनने वालों को और आपके घर परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
2: जी, जन्माष्टमी की आपको भी शुभकामनाएं। तो आप मना रहे हैं जन्माष्टमी?
3: जी बिल्कुल मैम।
2: जी, यहाँ पे भी मनाया जाता है, मंदिरों में और घरों में भी बहुत सारे लोग उपवास वगैरह रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
3: जी मैम, तो ये तो फेस्टिवल मैम देखने को बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ जो रात्रि में रौनक होती है शहर की,
2: जी जी,
3: मटकी तोड़ना और रात रात भर मटकी टूटती रहती है मैम।
2: हाँ जी
3: जी, काफी अच्छा लगता है मैम।
2: जी, तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: मैम, मूवी का नाम है खानदान।
2: जी, खानदान फिल्म का।
3: उसमें एक गाना रहेगा, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा।
2: जी, खानदान फिल्म का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा जरूर हम आपको सुनाएंगे। और इसी तरह से हमें कॉल करते रहिए और हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा।
3: जी, थैंक यू मैम।

0: हेलो फरमाइश
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्ते।
1: आज तो पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी हाँ, पहली बार बात हो रही है जी।
1: मैं शेख जफर हसन क्वाट जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी जी, कैसे हैं सर आप?
1: जी अच्छे हैं। आप अपना नाम बता देती हैं?
0: कविता बोल रही हूँ मैं।
1: कविता?
0: जी जी।
1: अच्छा, बोल रही हैं आप, बहुत अच्छा जुबान आपकी है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नए लोगों से भी बातें करनी चाहिए। वैसे
1: बात करने का एक अंदाज में उद्घोषिका होती है, ऐसे तो बहुत सारे रेडियो में भाग ले रहा हूँ
0: जी,
1: और आपका तो पुराना श्रोता हूँ, क्योंकि आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: हाँ जी।
1: तो कहने का मतलब ये था कि इतने अच्छे से कोई घबराहट आपके चेहरे पर नहीं, आप बहुत ढंग से बात कर रही हैं
0: जी। बिना देखे हुए मेरा चेहरा पर लिया आप, तो इसी को कहते हैं तजुर्बा।
1: जी जी जी, खैर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ मैडम।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: तो मैडम गाना सुनना चाहता हूँ, तो फिल्म का नाम है सच्चाई।
0: जी, सच्चाई फिल्म का नाम।
1: हाँ, 1969 में फिल्म आई थी, ये शमी कपूर और साधना थे इसमें हीरोइन।
0: जी जी जी।
1: अब बोल बता देता हूँ, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के दो
0: तो चार दिन। जी हाँ, ये काफी लोकप्रिय गाना है।
1: हाँ, तो इसको गाएंगे, आपको शेर सुना देता हूँ
0: जी।
1: तो चाहे कि जहाँ भी मेरी कॉल हिंदुस्तान में लगता है मैं शेर सुनाता हूँ, मैडम भी होती है
0: जी जी जरूर,
1: और उद्घोषक भी होते हैं
0: जी
1: जी। तो जिंदगी गमों से दूर नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, इस दोस्ती को संभाल कर रखना, दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती।
0: जी, बहुत ही उम्दा शायर लगते हैं।
1: जी
0: अच्छी शायरी है।
1: सुन लीजिए, अच्छा जब काम करोगे तो जलेगी दुनिया, और बुरा काम करोगे तो कहेगी दुनिया, सोच बदलोगे जमाना भी बदल जाएगा
0: जी,
1: इस तरह तुमको हंसी एक मिलेगी दुनिया।
0: सही तो, है, सोच बदलनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गाना मैंने पसंद जो किया है मैडम।
0: जी जी जी।
1: दो लाइन में आपको गाकर सुना देता हूँ।
0: जरूर सुनाइए
1: जी। तो ये 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के दो चार दिन, प्यार के दो चार दिन। और जो है आपको क्या बोला जाता है, इसके जो है राजेंद्र कृष्ण गीतकार हैं
0: जी जी,
1: और शंकर जयकिशन संगीतकार हैं। इस फिल्म में मोहम्मद रफी आशा भोसले ने गाया था। और मैं चलते चलते कुछ दोस्तों को याद कर लूँ।
0: जी जरूर जरूर।
1: भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार
0: जी,
1: अनवर बिहारी, मकसूद हुसैन, मुकेश कुमार, ये दोनों मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गोल्डी और गणेश दास बंगाली।
0: आपको और आपके सभी दोस्तों को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे। ऐसे हमें कॉल करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।
1: हम बराबर करते हैं मैडम। नौसर साहब नहीं, आज पहली बार आप आई हैं
0: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: हाँ जी हेलो फरमाइश से बोल
1: जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी अनूप जी कैसे हैं?
1: अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, और एब्सोल्युटली आप अच्छी है,
0: जी जी अच्छी
1: क्योंकि
0: हूँ।
1: बहुत दिन के बाद आपसे मेरा बातचीत हो रहा है ना।
0: जी जी
1: तो मेरा नाम भी मैं बोल ही दिया
0: जी
1: है ना।
0: आप हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, आपकी आवाज से ही हम पहचान जाते हैं आप
1: क्या
0: कौन
1: बात
0: बोल रहे
1: क्या
0: हैं।
1: बात,
0: तो
1: मैं धन्य हो गया नूरी
0: जी जी जी
1: नूरी मैडम। और ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो।
0: जी बहुत सही बात
1: बड़े
0: कही।
1: बुजुर्ग कहते हैं,
0: जी
1: फसल रंग बदले तो काट दो
0: जी
1: और लोग रंग बदले तो छोड़ दो, रिश्तों में चालाकी नहीं सच्चाई ही टिकती है
0: जी
1: ना।
0: जी अनुप जी आपको यहाँ रोकने के लिए माफी चाहूंगी। आपने मुझे नूरी जी कहा पर आज नूरी जी नहीं है, आपको पहचानने में थोड़ी सी आपकी चूक हो गई है।
1: जी जी
0: मैं
1: जी जी
0: कविता जी
1: बिल्कुल
0: बोल रही हूँ।
1: कविता जी, जी जी
0: जी
1: जी कविता
0: तो
1: जी,
0: आपकी
1: बहुत दिन
0: शायरी भी
1: बाद
0: बहुत अच्छी थी। और आज आप
1: क्या बात
0: कौन सा फिल्म का गाना सुनना
1: जी,
0: चाहेंगे?
1: आज गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया, और गाने का बोले से जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, महबूब की आंखों में बड़ी बात है प्यारे, ऐसे करके गाने, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया,
0: जी जी जी
1: माफी
0: कोई
1: चाहता
0: बात
1: हूँ
0: नहीं, अच्छा गाना है, आपने अच्छा
1: जी। अच्छे
0: चुना
1: गाने हैं,
0: है। और साथ ही
1: और
0: आप
1: कुमार सानू जी है,
0: जी
1: और
0: जी
1: साथ
0: जी
1: में शायद अलका याग्निक जी है, और कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ
0: जी जरूर बताइए अपने साथियों के नाम।
1: जी। पहले है हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, जिसका नाम है विजय सिंह लखेरा जी फ्रॉम हरियाणा, और पुरुषोत्तम कुमार जी फ्रॉम कश्मीर, और है हमारे लुकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, हमारे छोटे भाई अविनाश जी फ्रॉम त्रिपुरा, प्रेम जी चक्रवर्ती जी फ्रॉम असम, और है हमारे अमर सिंह साहू जी, और श्रीकांत जोशी जी, और हमारे सहधर्मिनी है सुतपा भट्टाचार्य जी, देवजीत दास मेरे छोटे भाई, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम आकाशवाणी ईटानगर के। हेलो फरमाइश सबके लिए, और खास करके हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जिसका नाम है बोके बागरा जी, और है नूरी जी, और हमारे जी कविता जी के लिए। तो चलिए कविता जी, बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए, हमारे श्रोता भाई बहन अच्छे रहे, ये मेरा घर से प्रार्थना
0: जी
1: है ना
0: बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। और
1: जी।
0: आपके सभी दोस्तों को भी साथ ही हम ये गाने डेडिकेट
1: जी
0: करते हैं।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी। हेलो
1: आइए
0: फरमाइश से बोल
1: दीदी,
0: रहे।
1: सादा सा प्रेम प्यार सा नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ शारदा जी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आपका आशीर्वाद है, बांके बिहारी की कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद से हैं।
0: जी अच्छे से ही रहिए, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने बांके बिहारी जी का जिक्र किया है, तो आप लोग जन्माष्टमी भी जरूर मनाते होंगे।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ में आस्था श्रद्धा पूर्वक ये पावन पर्व मनाया जाता है। और यहाँ तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है कई दिनों तक चलता रहता है, और यूँ कहना चाहिए कि पूरे एक महीने का उत्सव मनाया जाता है।
0: जी, तो आज
1: सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसके बाद भगवान कृष्ण की छठ मनाई जाती है,
0: जी
1: और इसके बाद बलदाव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और राधा रानी का राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये त्योहार सब पूरे एक के बाद एक चलते रहते हैं, इस तरह से ये पूरे महीने भर त्योहार चलता है।
0: जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि जो जन्माष्टमी करते हैं बिना राधा अष्टमी किए उनको फल नहीं मिलता, तो राधा अष्टमी तक तो कृष्ण जी को
1: जी
0: याद किया
1: सबकी
0: ही
1: धूम
0: जाता है
1: रहती
0: राधा।
1: है।
0: जी, तो आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी ईटानगर को, सभी श्रोताओं को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: दीदी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मथुरा वृंदावन में
0: जी
1: परिक्रमा का बहुत महत्व है। यहाँ पर जितने श्रद्धालु भक्त पर्यटक आते हैं
0: जी
1: वो प्राय प्राय मथुरा की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर परिक्रमा है 84 कोस की, ब्रज की यात्रा करते हैं, मतलब
0: जी
1: परिक्रमा करते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी इन परिक्रमा का तो महत्व है ही। हम भगवान की जो मंदिर का परिक्रमा कहीं भी करें वो तो काफी महत्व ही रखता है।
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: तो आप बताइए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, और साथ ही अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो उनके नाम भी आप बोल सकते हैं।
1: जी अवश्य, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है कृष्ण कन्हैया। कृष्णा
0: जी
1: कृष्णा आयो कृष्णा, जगमग हुआ घर अंगना, जय
0: जी
1: जय यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की। ये गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर, हम इसे प्ले करेंगे।
1: ये प्यारा सा जो भक्तमय गीत है भगवान कृष्ण का, ये मैं याद करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपको सादर समर्पित करते हुए
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बागरा साहब को याद करता हूँ, और साथ में हमारे ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं, लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव है जी हैं, अविनाश जी हैं, और साथ में पुष्कर नाथ जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पूरन वर्मा, राकेश कुमार, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत रेडियो ईटानगर को सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी शारदा प्रसाद जी, आपको हम जरूर कृष्ण कन्हैया फिल्म का ये गाना सुनाएंगे, और इसी तरह से हमसे जुड़ते रहेगा कॉल करने के लिए। थैंक यू।
1: जी हृदय धन्यवाद, शुभ कृष्ण जन्माष्टमी के साथ करता हूँ सादर नमस्कार।
0: हेलो फरमाइश
2: जय माता जी।
0: जी। जय माता जी, आप कैसे हैं?
2: बस बढ़िया हूँ, मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंतमहल बुगला।
0: जी, पूरन जी कैसे हैं आप? ठीक है।
2: बस मैडम बढ़िया हूँ, बहुत देर से ट्राई कर रहा था, रात तो कुछ नहीं। मैडम आई, आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी जी जरूर, मैं कविता बोल रही हूँ।
2: थैंक यू मैडम। कविता जी आप शायद पहली बार ही कार्यक्रम कर रही हो आज।
0: जी हाँ, ऐसे तो जुड़े रहते हैं पर बहुत दिनों बाद आज मैं फिर आपसे जुड़ रही हूँ।
2: जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम आपसे बात करके, क्योंकि हम चाहेंगे कि मैडम आप भी आते रहिए बीच बीच में, तो बहुत अच्छा लगेगा कार्यक्रम में आपका आना भी।
0: जी जी जरूर जरूर, हम आएंगे। और आज आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
2: जी मैडम, कल तो आपको और तमाम सुनने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो उसकी हार्दिक शुभकामना।
0: जी, आपको भी, आपके सभी परिवार को और साथियों को भी, हमारी ओर से भी, आकाशवाणी ईटानगर की ओर से भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी।
2: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा कृष्ण कन्हैया।
0: जी कृष्ण कन्हैया फिल्म का आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: उसमें गाने के बोले कृष्णा कृष्णा हाय कृष्णा।

0: जगमग हुआ है तेरा, ये ऐसा कुछ
1: जी जी जी जी
0: जी की बात
1: जी जी और साथ ही आप अपने साथियों को भी डेडिकेट करना चाहते हैं ये गाना?
0: जी मैडम, सबसे पहले तो आप है
1: जी, धन्यवाद।
0: और बो के बावरा सर जी है, और नूरा मैडम है, और राकेश है, शिवा लोहार है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश पात्र है, रमेश प्रजापति, अमल, बिमल, गोल्डी भाई है, और जितने भी लाइव कॉलर आपके साथ, टिंकू दास जी, तमाम सुनने वाले के लिए सुनाना चाहता मैडम ये गाना।
1: जी जी जरूर पूरन जी, हम आपको ये गाना जरूर सुनाएंगे।
2: श्रोता, हमारे इन दो लिसनर्स ने एक ही गाने की रिक्वेस्ट की है, तो आइए उनके रिक्वेस्ट का ये गाना सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, मैं असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा भट्टाचार्या
0: जी।
1: कैसे हो?
0: जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ।
0: तो आज आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने का बोल रहे हैं
0: जी।
1: तो जा सोल जा नीति बादे बोल जा नीति बादे दिल चूरा गया, ये गाना सुना दीजिए।
0: जी जी जी शोल्जिया शोल्जिया जी।
1: दोस्त का नाम लूंगा?
0: जी जी जरूर लीजिए।
1: पहले तो आपके लिए
0: जी, थैंक यू।
1: पोके बाबा साहब के लिए
0: जी, उनकी तरफ से भी शुक्रिया।
1: उपमा भट्टाचार्य, प्रेमोदित चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, अविनाश तेली, लोकेंद्र वर्मा, श्रीकांत जोशी
0: जी जी,
1: बसंती लाल सेवाबंशी, लोकेंद्र वर्मा, विजय सिंह लकेरा, बापन आचार्य, सिंधु दास, अमर सिंह साहू, सबके लिए
0: जी। आपको और आपके सभी दोस्तों को हम जरूर ये गाना सुनाएंगे। इसी तरह से हमें कॉल करिएगा। थैंक यू कॉल करने।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते,
1: मैं रमेश पात्र गुलाया का सम से बात कर रहा हूँ।
0: जी रमेश पात्र जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप?
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: जन्माष्टमी की शुभकामनाएं है आपको।
0: जी आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, साथ ही आपको ये सभी फ्रेंड्स और परिवार को भी इस पावन पर्व की ढेर बधाई।
1: हो गया टीचर्स डे की भी।
0: हाँ जी, उसके तुरंत बाद टीचर्स डे है। जी
1: सभी को जी जी को शुभकामनाएं है।
0: जी और रमेश पात्र जी, आप आज कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं आज सुनना चाहूँगा संजोग, मूवी का नाम है संजोग
0: जी,
1: और गीत के बोल है यशोदा का नंदलाला।
0: जी जन्माष्टमी का पर्व है और आपने ये बहुत ही अच्छा गाना चुना है।
1: हाँ
0: जी, और साथ ही आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: हाँ हाँ, डेडिकेट करना मेरा श्रीमती है रुनु पात्र, अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, भाईकन मुंडा, देवाशीष हजारिका, जोगेंद्र अंकी और रमेश प्रजापति, भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा और रेमृत चक्रवर्ती, प्रेम सिंह सिसोदिया और सुनने वाले सभी लिस्टर्स को ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह से हमें कॉल करिए, हमसे जुड़े रहिएगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी
0: जी। नमस्ते,
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपके नीली शुतार लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं मैडम?
0: हम भी ठीक है।
1: हाँ जी, आज मुझे गाना सुनना है खुदा गवाह फिल्म का।
0: जी, खुदा गवाह फिल्म का कौन सा गाना?
1: तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
0: जी जी, जरूर सुनाएंगे हम। और साथ ही ये आप गाने को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: हमारे साथ है लोकिंदर वर्मा
0: जी,
1: भगवान सिंह शर्मा
0: जी,
1: और गजराज लोधी
0: जी,
1: और मेरे साथ रमेश प्रजापति टेलर मास्टर
0: जी,
1: और राकेश कुमार है शिमला। धन्यवाद मैडम।
0: जी जी, धन्यवाद। हम आपको जरूर आपके पसंद

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैम.
0: जी नमस्ते.
1: जी मैम, हम डमरिया असम से बोल रहे हैं.
0: जी विमल बसुमतारी जी, आप कैसे हैं?
1: जी मैम ठीक है. मैं
0: जी
1: अच्छा हूँ.
0: तो आज आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हमको आज सुना दीजिए ये दिन फिल्म का ओपीएफ का ये गाना सुना दीजिए.
0: जी
1: ये गाना सुनेगा हम लोग रमेश पत्र, सुतिल बरुआ, संध्या रानी गोगोई, प्रदीप कुमार हर्मा,
0: जी थैंक यू. हम आपको जरूर ये गाना सुनाएंगे आपके पसंद का दिल फिल्म का. तो इसी तरह से हमें कॉल करिए, हमसे जुड़े रहिएगा. जी थैंक यू.

0: हेलो फरमाइश
1: कर मैडम, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट का न्यूज से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं और बहुत दिन के बाद कॉल किया आज।
0: जी जी जी जरूर, आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा, ऐसा नहीं है कि
1: जी हाँ,
0: हम
1: जी हाँ बिल्कुल जुड़े रहेंगे
0: जी।
1: और आपके लिए और सर के लिए
0: जी
1: आने वाले जन्माष्टमी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कृष्ण जन्माष्टमी।
0: जी आपको भी बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।
1: और अपने जितने भी श्रोता है ईटानगर के सबके लिए भी।
0: जी तो कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आज इस आप प्रोग्राम में?
1: आज मैं आपकी आपकी पसंद का कोई भी अच्छा सा गाना सुनूंगी।
0: जी मेरे पसंद का कोई भी अच्छा सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी
0: जी जरूर हम सुनाएंगे आपको। और साथ ही आप अपने साथियों के भी नाम लेना चाहेंगे?
1: नाम तो ये गाना पहले तो आपके लिए डेडिकेशन कर रहा हूँ और दूसरे अपने सर वोके बाबरा के लिए जी और अनुप कुमार भट्टाचार्य सतुपा भट्टाचार्य और हमारे दोस्त पप्पूराम घाट और मनोज कुमार चित्र सिंह जी और अशोक पतिवंशी।
0: जी जी जी थैंक यू कॉल करने के लिए और हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।
1: जी हाँ थैंक यू, धन्यवाद।
0: हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी बात कर रहा हूँ।
0: जी धीरज जी कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे हो और आकाशवाणी ईटानगर परिवार और आप सभी सकुशल हो गए।
0: जी जी जी बहुत ही अच्छे हैं हम सभी यहाँ पे। जी
2: हमारे यहाँ आज शीतला सप्तम का पर्व मनाया जा रहा है।
0: अच्छा।
2: आज के दिन की विशेषता मैं दीदी आपको बताऊं?
0: जी जी जरूर।
2: कल राधन छठ के दिन बहनों ने खाना बना दिया आज के लिए।
0: जी
2: तो आज पूरा दिन ठंडा खाएंगे सभी लोग। हाँ, और बहनें उपवास रखेंगे।
0: अच्छा,
2: और फिर बाद में स्नान करने के बाद फराहार करेगी। तो आज का शीतला सप्तम यानी शीतला माता का एक त्योहार रहता है।
0: अच्छा।
2: वैसे देखा जाए तो गुजरात में नागपाचन से राधन छठ, शीतला सप्तम और जन्माष्टमी यानी लगातार चार त्योहार आते हैं। और ये त्योहार में धार्मिक परंपरा यानी जुड़ी हुई है।
0: जी जी।
2: तो भारत भर में कई जगह पर ये एक साथ चार पर्व मनाए जाते हैं दीदी।
0: जी जी, जैसा कि आज शीतला माता की पूजा होगी तो कल फिर जन्माष्टमी होगा।
2: जी, और जन्माष्टमी की मैं बात बताऊँ हमारे यहाँ की।
0: जी जी।
2: तो जब जन्माष्टमी आती है उसके 10 दिन पहले बहने तालाब में से कच्ची माटी लेकर वो माटी से कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाते हैं।
0: अच्छा।
2: और हमारे गांव है, शहर है, तो वहाँ बीच में उसको यानी एक बाजोट में लकड़ी का जो आता है वो उसमें बिछा कर उसको श्रृंगार देते हुए रात को कृष्ण भक्ति के गीत गाती है बहने।
0: जी जी।
2: और जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह में वो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर यानी गीत गाते गाते तालाब पर जाते हैं और वहाँ विसर्जित करते हैं। और इसके बाद 7-8 दिन कई बार कई जगह पर 10 दिन खाने का व्यवस्था करते हैं भाई लोग, बहनों के और भाइयों के सभी के लिए।
0: जी जी जी, पूरे भारत वर्ष में जन्माष्टमी के त्योहार जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में मनाया जाता है।
2: हमारे विविध प्रदेश है तो विविध प्रदेशों में अलग अलग तरीके से ये त्योहार मनाते और कई जगह पर के जो त्योहार होते तो एक दूसरे श्रोता हमको बताते आकाशवाणी ईटानगर के जरिए और केंद्र के जरिए, तो हमें ये सब जानकारी मिलती है तो हम भी इसे यानी
0: साझा करते हैं
2: जानकारी से शुक्र होते हैं। और हमें ये सब परंपरा से बहुत अच्छा लगता है, भारतीय जो संस्कृति है उसको उत्तेजन मिलता है, बढ़ावा मिलता है।
0: जी तो आज

0: आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: कोई भी हमारे श्रोता मित्र की फरमाइश हो उसमें मेरा कॉल सम्मिलित करना, क्योंकि ज्यादा मुझे बातचीत का रुचि रहता है, बातचीत सुनने का रुचि रहता है। गाना तो कोई भी आप सुनाओगे, गाने सब अच्छे होते हैं।
0: जी जी जी शुक्रिया। गाने तो हम सब कोशिश करते हैं सभी अच्छे ही प्ले करें। तो साथ ही आप अपने दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं किन्हीं को?
1: बिल्कुल दीदी, हमारे आकाशवाणी एकता ग्रुप है, फोन इन ग्रुप है, इसमें सारे भारत के श्रोता जुड़े हैं। आपको मुझे जोड़ने के लिए हमारे आदरणीय लोकेंद्र वर्मा जी है उज्जैन के, फिर गुणवंत भाई कड़ू है, गौतम राय बोली, तुकाराम जी, गंगाधर जी है, फिर कई श्रोता है, रमेश साहू है, फिर हमारे जहां साहेब है, कई श्रोता है जो ये कार्यक्रम सुनते हैं, और हम सभी को हमारा नंबर जो ईटानगर का तो हम ग्रुप में अपडेट करते हैं।
0: जी जरूर, हम आपको कोई भी एक अच्छा सा गाना हम आप
2: श्रोताओ, हमारे इन दोनों लिसनर्स ने, फरमाइशकर्ताओं ने हमें जो सॉन्ग रिक्वेस्ट की है वो हमारे पसंद का कोई भी गाना प्ले करने को कहा है, तो आप दोनों की खिदमत में पेश है हमारे पसंद का ये गाना।
0: हमने कॉल करें

0: हल्लो फरमाइश।
1: दोस्तों अभी आप आनंद उठा रहे थे आप सभी का बेहद ही मन पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ, और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बैक टू बैक हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, और उसके बाद पेशे खिदमत करेंगे हम वेस्टर्न मेलोडीज। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
2: अरे पहली बार माँ बनने वाली हो, इतनी उदास क्यों हो?
3: नर्स दीदी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ANC टेस्ट करवाया था, रिजल्ट पॉजिटिव निकला, सच में बहुत परेशान हूँ।
2: बस इतनी सी बात पर इतना टेंशन? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सही वक्त पे सही इलाज करवाने से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है और तुम्हारे बच्चे को एक HIV मुक्त जीवन मिल सकता है।
3: सच में दीदी?
2: हाँ बिल्कुल, आप भी सही वक्त में सही निर्णय ले और HIV को करे नियंत्रण। अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar.

दोस्तों हिंदी गीत के साथ ही हमारे हिंदी गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। अब आप आनंद उठा पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज के साथ।

0: that brings us to the close of today's episode on Western Melodies, right here on Akashvani Itanagar. I'm Kai, hoping these country stories felt familiar and honest. Until next time, take care, trust your heart, and let the music travel with you. Bye-bye.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings, or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay, or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
5: Bandhu, nayi car jeetne ka mauka? Wow, papa ko surprise dungi. Bas thodi si to unki detail bharni hai.
6: Ruk ja, Bandhu.
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तू समझ गई ना? रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
9: So easy.
10: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: माँ, अम्पी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं HIV टेस्ट करवाने के लिए।
13: हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? सोचा भी है समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी?
12: अरे माँ, समाज की सोच से ज्यादा जरूरी है हम दोनों की सेहत और जीवन। अगर एक टेस्ट से हमारे स्वास्थ्य जीवन शैली में कोई बदलाव आता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब प्रेम क्या है तो साथ मिलके और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, तो सोचा HIV टेस्ट से शुरुआत क्यों ना करें। यह हर सरकारी अस्पताल में गुप्त रूप में किया जाता है।

0: करता है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप भी अधिक जानने के लिए आज ही राष्ट्रीय टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही नेशनल टोल फ्री HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर संपर्क करें। असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। HIV संक्रमित सिरिंज का प्रयोग ना करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाहरलगुन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा जनहित में जारी।
2: FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे, जी हां, भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हो जाए आपके सेफ्टी के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे कहीं कहीं बारिश का मौसम है तो कहीं बहुत कड़ी धूप निकल रही, लेकिन बारिश का मौसम हो या ना हो, मैं एक ही बात कहूंगी, आप अपना पूरा ध्यान रखें। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते वक्त आपको सीट बेल्ट, चार पहिया वाहन चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए और अपनी हिफाजत के लिए बांधनी चाहिए, ना कि पुलिस को देखकर आपको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, है ना दोस्तों। दूसरी और बहुत खास बात वो ये है कि आप फोन पर अगर बात कर रहे हैं तो गर्दन टेढ़ा करके आप फोन पे बात ना करें। वाहन चलाते वक्त बेस्ट है कि आप एक ब्लूटूथ एक कान में डाल के, बहुत आवश्यक हो तो ही आप बात करें, अदरवाइज अगर फोन बहुत खास या फिर बहुत जरूरी है तो आप गाड़ी को साइड करके उसके बाद इंडिकेटर दे के उसके बाद बात करते हुए खत्म करते हुए आप आगे बढ़े, इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दो पहिए वाहन चलाने वालों को मैं एक ही बात कहूंगी दोस्तों कि आप पुलिस को देखकर एक दो किलोमीटर पीछे खड़े रहते हैं और घंटों इस इंतजार में खड़े रहते हैं कि पुलिस कब अपने नाकाबंदी से हटे और आप आराम से वहां से स्किप होके चले जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगी, हेलमेट आप अपने सिर के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहने, ना कि पुलिस के डर से पहने। पुलिस का क्या है दोस्तों, वो तो आपकी सेफ्टी हमेशा नहीं कर सकती है, फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए ही जगह जगह नाका करके रखती है, ताकि वो आपसे चालान इसलिए काटती है ताकि आपको ये एहसास हो कि मैं नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहन के निकलूं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, दूर खड़े रहते हैं, पुलिस की नाकाबंदी हटे तो आप वहां से निकल जाए, ऐसे में कभी भी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं दोस्तों और जान भी गंवा सकते हैं। तो खुद की सुरक्षा खुद करें, हेलमेट पहने और अपने लिए पहने, अपनी सुरक्षा के लिए पहने, अपने फैमिली के लिए पहने। आपको याद रखना है दोस्तों कि घर में आपका इंतजार आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कर रहे हैं। आपका सफर कहीं अंतिम सफर ना हो जाए इसीलिए, और वो कहीं जिंदगी का सफर को सफरिंग्स में ना बदल दे, जो रह जाए पीछे छूट जाए आपके नाते रिश्तेदार, या फिर आप खुद कहीं जो है दुर्घटनाग्रस्त होके, बेड रिडन होके कोमा में ना पड़े रहे। इसलिए दोस्तों मैं फिर से दिल से अपील करती हूं आप सभी को कि आप अपना हेलमेट पहन के दो पहिया व्हीकल यानी कि स्कूटी या बाइक्स को चलाए, अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चलाएं, ट्रिपल कैरी ना करें, स्पीड को बैलेंस करके आप अपने वाहन को चलाएं, चाहे वो चार पहिया हो या फिर दो पहिया। याद रखें कि आपकी सुरक्षा में औरों की भी सुरक्षा है।

तो दोस्तों बस अब से कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूले बिसरे गीतों के इस सेगमेंट में। ये भले ही भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, लेकिन होते हैं सदाबहार नगमों का कारवां। जी हाँ दोस्तों, और ये वो नगमे होते हैं जो हमेशा हम इन्हें गुनगुनाना बेहद पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व सारे देश भर में, पूरे देश भर में धूमधाम से हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग रात्रि के ठीक 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि कब कन्हैया का जन्म हो और सब लोग उल्लास हर्षो उल्लास मनाएं, उत्सव मनाएं। जी हाँ, तो आज आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम आपको कुछ गीत कृष्णा यानी कि हमारे नटखट नंदलाल के ऊपर में सुनाने जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।

0: रियली फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सी गीत ये जो हमने आप सभी के लिए प्ले किया, मुझे भी बेहद पसंद है। और रियली सो सूदिंग, इतना अच्छा सॉन्ग, इसे सुन के मन में कुछ खास एक फीलिंग सा आता है ना दोस्तों। बहरहाल चलिए अब आपको सुना दे कुछ और रोमांटिक गीत। जी हाँ, कभी कभी दिल में कुछ ऐसे बातें रह जाती हैं जिन्हें हम चाह कर भी किसी से कह नहीं पाते। आंखें खामोश रहती है लेकिन दिल के अंदर ही अंदर किसी की याद में तड़पता रहता है। किसी खास इंसान की आवाज, उसकी मुस्कान, उसकी छोटी सी बात, सब कुछ बार बार याद आता है। और फिर दिल बस यही कहता है, काश वो पल फिर लौट आए, काश वो शख्स फिर हमारे सामने हो। इन्हीं खूबसूरत और थोड़ी सी दर्द भरी यादों का नाम है हमारा अगला गीत। तो अगर आपके दिल में भी किसी की याद है ना, और अगर कोई दूर होकर भी आपके दिल के बेहद करीब है दोस्तों, तो इस गाने को महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए उस इंसान को। तो पेश है खिदमत है ये बेहद खूबसूरत सा गीत, बस आप सभी के लिए। अच्छा कीजिए।
1: For your loved ones.

दोस्तों, फिल्म बंदिश के इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज की फूली बिस्तरी गीतों का ये सेगमेंट जो है अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज के इस भूले बिस्तरे गीतों के सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, समय एक जगह पर कभी नहीं टिकता, तो हमारा भी समय हो चुका है दोस्तों कि अब हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, सुबह के ठीक 5:48 पर आपका कल का सवेरा ढेर सारी खुशियां लेकर आपके दरवाजे पे दस्तक दे। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और जी हाँ दोस्तों, अपना भरपूर ख्याल जरूर रखें, और साथ ही अरुण एफएम पर प्यार बरसाना ना भूले। अरुण एफएम को यूं ही सुनते रहे। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि ही मांगिए, बाकी सब अपने आप ऐसे ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आज जन्म अष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हुए हम यही कहेंगे कि लॉर्ड कृष्णा आप सभी को आशीर्वाद आशीर्वाद दे, स्वस्थ रखे, हैप्पी रखे, खुश रखे।

हेल्दी रखे। और साथ ही कल टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए संचार निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की एक बार फिर से मंगल कामनाएं करते हुए अब हम आप सभी से रुखसत होने की इजाजत चाहेंगे। आगे के कार्यक्रमों के लिए FM गोल्ड को सुनना ना भूले। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा का केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने बताया कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वर्षों में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पतन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर ने आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
2: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल, चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोड़जी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल के गणपतियार मंदिर में लाल चौक पर शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के विस्तु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स कारूप रस्मुयेन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 18 in Shenzhen this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, स्वच्छ कोयला और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौतों पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली गणतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार को नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। राजधानी वार्सा में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: श्री जयसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नवल

0: پراسی پور میں 218، نول پراسی پشچم میں 208، نواکوٹ میں 185، رسوا میں 140، گورکھا میں 72، دھانڈنگ میں 60، تنہو میں 38 لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے۔ کاٹمانڈو کے اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اور لوگوں کی موت ہوئی۔ विश्व द्रोपण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व द्रोपण में आपका फिर स्वागत है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों व उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जैसे विषयों पर विमर्श हुआ। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मामलों के मंत्री प्रोफेसर फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने पेरिस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भारत की भागीदारी और बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में फ्रांस की भागीदारी पर चर्चा की।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भाग लेने और फ्रांस के साथ अंतरिक्ष साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और सुरक्षित अंतरिक्ष पर ध्यान दिया जाएगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। भारत में बाहरी अंतरिक्ष के टिकाऊ इस्तेमाल, अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक डेटा की सुलभता, खुलेपन और अखंडता और फ्रीक्वेंसी प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन के निर्णायक ढांचे के समर्थन पर सम्मेलन के प्रस्तावित नतीजों का स्वागत किया। फ्रांस के मंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और फ्रांस के मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने और उसे गति देने की फ्रांस की इच्छा व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत का दौरा करेगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक खुलेपन, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करेगा। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एड्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अनहा सिंह का मुकाबला मलेशिया की शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम की नेले ग्लिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, स्वच्छ कोयला और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौतों पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अभी लापता। इसके साथ ही विश्व दर्पण